काले वस जग बांधया किसदा फरू ना कोई जिन जम कीता सो सेवी है गुरमुख दुख न होए नानक गुरु।

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाए गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए बिन गुर हर नाम।

हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे तो बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई,

हर जीव तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामे ते सब उपजे भाई, नाए विसरे मर जाए, अज्ञानी जगत अंदर।

राम नाम लिव लाए, नानक नाउ बेड़ा नाउ तुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा हर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही,

आज न आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुरु सेवे सो वड भागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए यो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सत

कोई बातें बात रखी हठ अपने जिस पावे किस दे नानक नाम रते सुख पाया दरगे जापे से सूरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुलाना रहा त्रै गुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वरते सगल संसारा हों मैं विच पत खोई गुरमुख होवे चौथा पद चीने राम नाम सुख होई।

अतुल तुलाइंदा प्यारा जन नानक सद कुर्बान। सोरठ महला चौथा आपे सेवा लाइंदा प्यारा आपे भगत उमाहा आपे गुण गावाइंदा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे लेखन आप लिखारी आपे लेख लिखाहा मेरे मन जप राम नाम ओ माहा अंदिन अंद होवे वडपागी ले गुर पूरे हर लाहा रहाओ आपे गोपी कान है प्यारा बन आपे गऊ चराहा आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा कुवलिया पीड़ आप मराएदा प्यारा कर बालक रूप पचाहा आप अखाड़ा पाएदा प्यारा कर वेखे आप चोजाहा कर बालक रूप उपाएदा प्यारा चंदूर कंस के समाराहा आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूरख मुगदाहा सब आपे जगत उपाएदा प्यारा।

सौंप आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जा

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरण।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनों दे सु पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरपुरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई रतन लुकाया लुके नाही, जे को रखे लुकाई।

सब किस हुए गुरु पूरे जानाया पाई तिस बिन अवर न कोए रहाओ नाम भी होने पच मोए भाई गणत न जाए गणी बिन सच सोच न पाये भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त सो दिया भाई बिन सतगुरु परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई बिन सतगुरु ना

सच सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाये भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

पुजाई सेवो साध गहो ओट चरना ने बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्द अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न थापे साध संगत बुध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुराई कोट पराध अच्छा दियो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया सन बंदे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तुम बादरो एक पाजो राम।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए सोरठ महला पंजवा। गुरपुरा पे प्यो वड पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया राखे। नानक तो गुरु पूरा पेटे हो, सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना परम गवा।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहा सुख आगे मुख उजल, जन का संगवड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है, अगम अगोचर सब अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही, बूढ़क मोगृह अंध कूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकि तै आस पुजाई, दास अपने को तू विसरै नाही, चरण सूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुखदाते स्वामी, सबते ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई, कहो नानक जित करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे, शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा।

साज संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला सोरठ महला पंजवा। कर स्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाखे प्रभ सरणा प्रभ ते पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई भगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो।

मेरे सर्व कला बने आई, प्रगट पाई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा कर दूजा, चौपदे

मेरे देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जान्या दूरी रे। हर बेअंत हों मित कर वरनो, क्या जाना होए कैसो रे। करो बेनती सतगुर अपने, मैं मूर्ख देओ उपदेशो रे। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट परादी तरयारे। गुरु नानक।

पावत ते भयानक भया करे बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया। जह पंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया। सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना सेजन कृपित अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिखाई हर आराधे अरोग अनदाई।

जिसनु विसरै मेरा राम स्नेही, तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जे जन ओट गई प्रभ तेरी, से सुखिए प्रभ सरने, जे नर बिसरिया पुरख विधाता, ते दुखिया मैं गनने। जे गुरमान प्रभु लिवलाए, ते महा आनंद रस करिया, जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए, ते नरक कोर में परिया। जितको लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा, नानक से पकरी संतन की, हृदय पै मगन चरनारा। सोरठ महला पंजवा। राजन में राजा उरझायो, मानन में अभिमानी, लोगन में लोभी लोभायो, त्यों हर रंग रचे ज्ञानी। हर जन को यही सुहावे, तेख निकट कर सेवा, सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे। रहाओ अमलम स्यों अमली लग पायो, कूमन कूम प्यारी, खीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या में विद्यांशी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रखना साव लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जैसी पूख तैसी का पूरक, सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लग

करण हार तृण जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रवताने। खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई पूरब लिखिया पाई ए मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी संतन से व्योहारा संतन से हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का खोखा तर मुराए अब कहाँ करे गो जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते विस्मा दे। सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी।

मोह अभिमाना कामे सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंग मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर बिद जाने ताकि कर मन सेवा

पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरत मेला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुगद कै स्रोते हर नामा मुख

कीना। साध विकार बिखै रस्मा तो असंख खते कर फेरे, नानक की प्रभु पाहे बिनंती काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूरन अविनाशी, काम क्रोध बिख जारे, महा विखम अगन को सागर, साधु संग उधारे। पूरे गुर मेट्यो कर्म अंधेरा, पज प्रेम भगत प्रभ नेरा, रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया, मन तन रहे अधाई, जत कत पूर रहो परमेश्वर, कत आवे कत जाई। जब तक समझम ज्ञान पत बेता, जिस मन वसे गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, काकी पूरन पाला। कल कलेश मिटे दुख सगले, काकी जम की फाका, पहु नानक प्रभ कृपा तारी, मन तन पे बिगाता। सूरठ मेला पंजवा, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी।

साथी दरगह माने गुण गावत आराद नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाऊं प्रभ अपने जिन पूरन पैस सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग।

विनाशी। ताको विघ्न ना को उलावे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसेरिद अंतर अमृत हर रस्ता के। कर सेवा सेवक प्रभ अपने।

रचिया बल अपनो कर्मा ने मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी जो किछ करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रहाओ जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूं मैं बंधन के पारा देखिवार अनक पर्दे में परदारा संग थाके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न खाई काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई सूरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप अनद करो नित पाणी हर आचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख मासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी सारी संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्व पूत पार ब्रह्म कर्मान्या होवा सगल रे नारी

पाये गुरु दुआरी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

समायो सोरठ महला सन्यवा जाओ कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर नौ त्रिसना सुखी जा तू नाम लै तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर तो मंतन जीरे मुखी रहो सौ

आपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावो, हर जन मंगल गावो, रहाओ बिसर नाही कब हुए थे, ए विद मन में पावो, गुर पूरा थे क्यों वड़ पागी, जन नानक फतेह न पावो, सूरत महला समझवा, जा कै सिमरन सब कछ पाये, बिरती काल न जाई, इस प्रभु त्याग अगर कतराचो, जो सब में रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला, साध संग मिलन।

जब जीवन कैसे पावे। सोरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई, गुण निदान भगतन को बरतन।

उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलख बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभ पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार पै जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना

ਨਾਨਕ ਸਦਗੁਰਬਾਣ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ।

राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। सतत उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सच।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो पाई,

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर।

मेरा सतगुरु रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ, पाप दया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए, हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया, सूरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पई बढ़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ, अंदिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता, अपने दास को कंठ लाए राखे, जो बारिक पित माता, सोरठ महला पंजवा, करती जा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुका।

गुर वड्याई ताकी कीमत कहन ना जाई, फिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराशत लाथे मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा सब सृष्ट करे।

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय हम दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी सितलाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभु अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रख।

सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावंदा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

दास का सदा रखवाला पर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रहाओ वड पागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जप जीवे से वड पागा हर अमृत बाणी गावे सादा की दूरी नावे अपना नाम।

पर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जना रे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये जिस देवे पुरख विदाता

गुरपुर कीती पूरी, प्रभ रव रहा पर पूरी, खेम कुशल पया इसनाना, पार ब्रह्म वितों कुर्बाना, गुर के चरण कवल रिद तारे, विघ्न ना लागे तिल का कोई, कारज सगल सवारे, रहाओ मिल साधु दुर्मत खोए, पतत पुनीत सब हुए, रामदास सरोवर नाते, सब लाते पाप कमाते, गुण गोविंद नित गाये, साध संग मिल त्याये, मन बाचत फल पाए, गुर पूरा हृदय ते आए, गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, जन नानक ना

सिद्ध करत लाल तब चतुर पात रो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हौ हौ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो कृप

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे सब अपना, अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, सब सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

तै पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला।

ये पुण्य पदार्थ तेरा जन नानक एक से आया सर्व फला पुण्य पाया। सोरठ महला पंजवा करती जा दो पदे

हर के नाम की वडियाई, आप पैर गुण गाई, गुरपुरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

सतगुर आप गवाई, सिख संत सब सरसे होए, हर हर नाम ते आई रहाओ। जो मंगे सो लेवे, प्रभु अपने संता देवे, हर गोविंद प्रभु राखिया, जन नानक।

जो सुध भावे मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभ आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रकट।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन चिंधिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे सोरठ महला पंजवा गुर मिल प्रभु चितारिया कार्य सब सब

आनंद करो पित माता, परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास तुम्हारे।

सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाप रहाई बिघन गए हर नाई।

मिल कुशल सेती कर आए अपना गुरु त्याए मिल कुशल सेती कर आए।

हर आराधो हर आराध सबो किच पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म।

साच साच वखाना सोरठ महला पंजवा ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संभाली पूरन सबनी थाई रहाओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम रम।

हमारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

कृपा करे जिस प्राण पट दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया मेरे करते संत साध पे साथी कर जहली ने सर्व तुदी ने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूरन पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवा गरीबी गदा हमारी खन्ना सगल रेन चारी इस आगे को न टिके विकारी गुर पूरे ए गल सारी।

0: सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभु सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभु अपना हृदय ध्याए कर सही सलामत आए संतोष पया संसारे गुरु पूरे ले तारे संतो प्रभु मेरा सदा दयाला संतो प्रभु मेरा सदा दयाला अपने भगत की गणत न गणनी राखे बाल गोपाला रहाओ हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया हर नाम हृदय उधारे तिन सबदे थोक सवारे गुर पूरे तुस दिया फिर नानक दुख न सिया
1: सोरठ महला पंजवा हर मंत्र

रहाओ तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए।

प्रभ जियो खसमा न कर प्यारे बुरे पले हम थारे रहाओ सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस्कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनिद पार उतारे संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिद पूरन खसम हमारे रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कत हूं बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अर्गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर मादो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भजले जात अवसर गीत सोरठ महला नाम मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव दारा मीत पूत रख संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बोते जुग हारयो मानस दे लही नानक कहत।

जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रचपच, रैत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजमू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाक्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो,

संग छार सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो नेहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो पयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो।

नाम रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ नह निंदिया नह उस्तक जाके, लोभ मोह अभिमाना हर सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

मत साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहे बैराग, सो बैरागी जे खसमे पावे, हृदय शब्द सदा पैर रचिया, गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले, पावत वर्ज रहावे, सहजे माता सदा रंग राता, साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी, नाम वसे सुख पाई, जेबा नेत्र सोत्र सचराते, जल बूजी तुझे बुझाई। आस निरास रह बैरागी, निज कर तारी लाई, पिखिया नाम रजे।

कह पारी, दुर्मत कणे विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम ना पाए पाई, बिन नामे परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत, गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटई पाई, थाके कर्म कमाए, एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछु न जाए, गुर मिले पौ मन वसे पाई, पै मरना सच लेख, मज्जन दान चंगियाईया पाई, दरगह नाम विशेख। गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई, मन वस्या चूका पेख, ए तन हाथ सराफ को पाई, वखर नाम अपार, ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई, गुर शब्द करे विचार। तन वापारी नानका पाई, मेल करे वापार, सोरठ मेला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे, तिनके साथ तरे, तिना ठाक न पाई।

बिख माया चित मोया पाई, चतुराई पत खोए, चित में ठाकुर सच वसे पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर्ष्यों बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, चूका मनो गुमान। जल मल काया मांझिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महा रस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहण नीर पखालिए पाई, जल में बूढ़े तेहे। गुरबिन अलख ना लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह फिर पाए, बिर है बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आख है अपना पाई, गुरते बूझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया। हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ। भगतां नो जम जोहे ना साके, काल न नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वस्या, नामे ही मुक्त पाई। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर के सहज सुभाई, मन मुखा नो प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ। गुरमुख हृदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ। कूड कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ। भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विदाता। हौं मैं मार मनसा मने समाणी, गुर के शब्द पछाता। अचिंत कम करें प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वस्या, सब काज सवारण हारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मन मुख पौ के मुए बिल लाई, आवे जावे ठौर न पावे, दुख में दुख समाई। गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई, बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए। हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चार। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हौं वारी हौं वारणे पाई, सतगुर को सद बलिहारे जाओ, नाम निधान जिन दित्ता पाई, गुरमत सहज समाओ।

गुरबिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाइए पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवै अपना पाई, तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसै पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ मैला तीजा, हर जियो सबदे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सुहागणी पाई, अंदिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए, गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित ला।

मन हठ कार कमावनी पाई बिन नावे पूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अन दिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वै ता गुण रवे पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया इक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखिए पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाहिए पाई जिसते जापे तथ मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछे पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपालदा पाई।

साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर, जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार, कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई पौजल नाम आधार, नानक ते शरणागति पाई जे किल बिख काटनहार। सोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तैं अपना नाम जपाया, बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनो की तो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया, सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी टेक है प्यारे मन तन तेरी टेक, तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ। कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए, साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए। जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए, तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरण आए। मिठा करके खा

पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जोगुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह स्याण पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातिया प्यारे कूड ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे सेई सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे

अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दारा अन बत्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन

वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोआ नरक पोर का द्वारा हर कीरत साथ संगत है सिर कर मन कै कर्मा कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। तंदा करत्या ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह न लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा इक ना भगती लाए इक आप खुआएंदा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाएंदा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएंदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनों सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हो मैं परम पुलाए गुर प्रसादी पौ पया बड़ भाग वस्या मन आए पै पै मन वस होवा होमे शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नौ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदियां नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया का।

फिर मिलन ना पाए नहीं जमे ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़े दुख ही मैं दुख पाहे, नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ, ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी, जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया, से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। सिर हर नाम तियावे जो हर रत्या, हर इक तियावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम तियावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया। श्लोक महला तीजा। अंतर ज्ञान ना आयो जित कुछ सोजी पाए, विन गिठा क्या साला ही है अंधा अंध कमाए। नानक शब्द पछाणिए, नाम वसै मनिया।

तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर।

गुरुमुख आप निवार है सब राज सृष्ट का ले, नानक गुरुमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुरु पास।

पालिए कित काम न आई। जन लावो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख।

तन तन भाव तिना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहतिया। तन तन भाव तिना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनतिया। तन तन भाग तिना साज जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया।

तीरथ फल पाये जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अनदिन भगत हर उचरे, हर भगति माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमती हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना।

पाए नानक गुर शरणाई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाणे।

हौ मैं खपे खपाए अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट न कोई जाहे ओए आप दुखी सुख कभू न पावे जन्म मरे मर जाहे नानक बख्श ले प्रभ साचा जे गुरचरणी चितलाहे पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया सही विचखण जंत जिन्नी हर त्याया अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पै पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाए नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई बिलाए सतगुरु मिले नाम।

आपके सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई। वडियाई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे, तेरी गत दोहू ना पाई।

आई। दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते देखो निरख शरीरा, हर के नाम बिन किनगत पाई कह उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम तन रह किरम दल खाई, काची गागर नीर परत है या तन की है बड़ाई।

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आ गए हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया आप।

कोई हर का नाम न जप गवारा, क्या सोचे बारंबार आ रहा हो अंधियारे दीपक चाहिए। एक बस अगोचर नहीं है बस अगोचर पाई, कट दीपक रहा समाए कह कबीर अब जान्या, जब जान्या तो मन मान्या, मन माने लोग ना पतीजे।

मिल पारस कंचन होया, मुख मनसा रतन परोया, निज पाव पया परम पागा, गुर पूछे मन पतियागा, जल पीतर कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया, गुर चेले है मन मानिया, जन नामे तत पछानिया।

सिखारी। अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनिक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी,

पानी आपन बापे ना किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन तीखन पावो मोख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर।

साहिब अपना अवर न जाचो कोए, नानक ता का दास है बिंद बिंद चुक चुक होए, साहिब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुक चुक होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हाँ इक दमी, मोलत मोहत न जाना, नानक बिनवे तिस है सरेव हो, जाके जी पराना, अंधे जीवना विचार देख केते के दिना रहाओ। सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा, नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा। जे तू किसे न देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना, नानक बिन मैं सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया, कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चला।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्र नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीण ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरिया समाए, तुझ बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए, श्री महला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा

आत्मा परात्मा एक हो करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर्ष्यो चित लागे फिर काल न खाए रहाओ, सच सिमरे हो वे प्रगास, ताते बिखिया में रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह

चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता कसु ना छीजे। चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बूझिए सत्यार रहाओ। चोर सवालियो चोर सियाना, फोटे का मूल एक दुगाना। जे साथ रखिए दी जैर लाए, जा परखिए खोटा हो जाए। जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आते ही खावे।

तुद पावे अदि परवान, नानक जाने जान सुजान, तनाफरी मैला पहला, काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई रहाओ, कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़या बूझे सो परवान, जिस सिर दरगे का निशान, तनाश्री मेला पहला, हर तीजा

माला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तूप मले आम लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नम नैन है तोहे को सहस मूरत नन्ना एक को ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही।

ही होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंगनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी महला तीजा कर दूजा चौप दे इको अंकार। सतगुर प्रसाद ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाए। गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए। गुर पूरे हर तन परगासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ। अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए। पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई। नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए। सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए। सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। त्रासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अस अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा। नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान। गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती। पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए। जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए। साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग। तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

समाने शब्द मिले प्रीतम सदा ते आए साच नाम वडे आई पाए आपे करता जुग जुग सोए नदर करे मेलावा होए गुरबाणी ते हर मन वसाए नानक साच रते प्रभ आप मिलाए तनासी मैला तीजा जग मैला मैलो हो जाए आवे जाए दूजे लो भाए दूजे पाए सब परज विगोई मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई गुर सेवा ते जन निर्मल होए अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ गुरमुख उबरे हर शरणाई राम नाम राते पगत दृढ़ाई पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, पूर्ण कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए।

तुम पीखत पे खारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंगराता हो बलिहार जाओ साचे तेरे नाम विटो तरण कारण।

परम पट फूले गुरु प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुरु से मन मानिया सनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे नौ सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल काटी कटक उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी त्रैसरी मैला चौथा हर के संत जना हर जपियो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर के नाम रता बैवागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख

हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी। तना श्री मेरा चौथा, हर का संत सतगुरु सतपुरखा, जो बोले हर हर वाणी, जो जो कहे सुने सो मुक्ता, हम तिसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी, हर हर कथा सुनो एक निमख तल, सब के लिए पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरुष वडानी, तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी। हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी, जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से, सब लाथी पूख पुकानी। जिनके बड़े पाग वड ऊंचे, तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी। तनासी मेला चौथा, हम अंधले अंध दिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन ताली। गुर

काली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपिया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासी मैला चौथा हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती।

नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा, कल युग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरयो चंद चना की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की, जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा, कर पंजवा दो कदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद उर्धार विचार मुरार रमोरम, मनमोहन नाम जपीने। अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी, गुर पूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट, हर संग हरि सब संग भये, हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इव ना पति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो, क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा। सतगुर इव हर हर नाम ते आई, हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे। हर हर हर जोत समाई, जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी। हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी, गुर भगत हर दीनी। तब हर से प्रीत बन आई, बहुत चिंत विसारी। हर नाम उर्धारी, नानक हर पय है सखाई। तनासरी मेला चौथा, हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ, हर कौजल पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए, हर होए संतुष्ट इन पान। हर नाम मुरारी, मन जपिए हर जगदीश। मिल संगत साधु मीत, सदा आनंद होवे दिन राती। हर कीरत कर दिनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम, हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासरी मेला चौथा, चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन। सब चाहे हर जियो तेरो नाम, गुर प्रसाद को विरला पावे। जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ, जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम। जो गावे सुने तेरा जस स्वामी, हों तिनके सब दलिहारे जाऊं। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनासरी मेला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवे। सब गावे हर हर उत्तम बानी, गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे। जिन सतगुर की आज्ञा सत सत परमानी। बोलो पाई हर कीर्त हर कर जल तीर्थ, हर दर तिन की उत्तम बात है संतो। हर कथा जिन जनों जानी। रहाओ आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई, हर मिल से अवर सब त्याग को है हर पानी।

ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे रहाओ। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो। अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सभी संगे सतगुर सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा को जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनासरी मैला पंजवा कर कृपा दियो मोहि नामा बंधन ते छुटकाए मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए। साध संग चिंत बिरानी छाड़ी अनंग बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाड़ी रहाओ। ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराई ब्रह्म प्रसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर करायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। बिन सियो तीठा अमृत बूठा सर्व लगो गुर मीठा जल फल नैयल सर्व निवासी नानक रमैया डीठा। तना श्री मैला पंजवा जब से दर्शन पेटे साधु परे बिनस कोए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। अब मोहे राम जसो मन गायो पयो परगास सदा सुख मन में सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा परि प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंत।

पूरन हुए तृप्ता में। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांध्यो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं त्रापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। सुना श्री मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तक ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार में।

जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पतपूरी नाम लैच कोट अगमासे, भगत बांसे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत महा सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल विख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला कन्या पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस गाई साथ साथ मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुम्हारी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवियो सब मध्य जब कत पे सो जाई तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप तगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले।

प्रभु जी को नाम जगत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव। जात ताप प्रमन गसदा कर उर्द ताप लै गैन, ए बिद नै पतिया नो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

नंगा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर

गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास की चित गए।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार, त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हाथ तारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, सुंगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांचे नित नानक, पुने पुने बलिहारिया, त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यो हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो अपना कर।

नानक जाको कृपा की जय। श्री मेला पंजवा मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक बिखिया विकार, देख सगल है सी के एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना।

हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापौगल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कर अठवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, हे लोक परलोक संग सहाई जब तक मोए रखवाले। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। सनासरी मैला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का रव रहा सर्व ठाई राव। पाको कोई न पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम से आई। सनासरी मैला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी, राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा अभित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे एक आसर, शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनासी मैला पंजवा जान को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै, जा का सतगुरु पूरा। ठाकुर गाय आत्म रंग, शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही, जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डहकावे, को अंतर जामी जाने, पाप करे कर मुह कर पावे, पेख करे निर्वाने। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताके उतते उत पेखे, आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटे नाही मन परमा, तब लग मुक्त न कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई। सनासरी मैला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने, जा कै मस्तक करमा, नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा। जन को नाम वडाई सोब, नामो गत नामो पत जन की, माने जो जो होग रहाओ। नाम तन जिस जन के पाले, सोई पूरा शाह, नाम व्योहारा नानक आधारा, नाम परापत लाहा। सनासरी मैला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे, माथे परों रवाल, रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, सुंदर सुगर बेअंत पिता, प्रभु प्रभु के पाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे, बचन अनूप रसाल, हृदय चरण शब्द सतगुरु को, नानक बांधे उपाल। सनासरी मैला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन, अपनी उकत खिलावे, सर्व सुख भोग रस देवे, मन ही नाल समावे। हमरे पिता गोपाल दयाल, जो राखे मैं तारी बार, तो तैसे ही पपाल रहाओ। नीत साजन सर्व गुण नायक,
सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। सनासरी मैला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे। राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित पवनित पारे तारे रहाओ। तन सो थान तन ओ पवना जा मैं संत बसारे। जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। सनातरी मैला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता दिल सुना कतहु जात। सतगुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ। अंगीकार कियो प्रभु अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभु अपने सुख पायो दिन रात। सनातरी मैला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सवारी। साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार। मूसा तूप गवावत काम नहीं गावारी रहाओ। कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक सब काढ़त साध जना संगारी। सनासरी मैला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना शीतल तनवन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती। रहाओ जिसका साथ ही रख लिया पूरन प्रभु की पांति। मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती। सनासरी मैला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे। प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत। रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप। नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप। सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर तारे हो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे। दयाल पुरख बख्शंद

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का काम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुर जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाये प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाये दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी मैला पंजवा तृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया।

निंदक टिकन न पावन मूले, उड गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, हो गया तत्सार, करण हार रखवाला होआ, जाता अंत न पारा वार, नानक दास रख

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर तारो पूजा कह कूप से काट ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दो खातन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। तनाश्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नानक।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा। रहाओ कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। सनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यों मन न लगाना। जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनाश्री मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो। हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनाश्री मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो दर परो। कहो नानक प्रभ बिद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पय निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल इक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल पै काटन हारे, होमे मार मिले पगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुरु के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे सात स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरुमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पै उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पावे।

उड़ जायो। मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत फाद राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया। अनक जन्म प्रमसित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ। अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे। कोई ऐसो रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे। परे रे सगल वेद न चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने। कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान। सगल अश्रम कीने मनवा ने पतीने विवेकहीन देही तोए। कोई पाये रे पुरख विदाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए। कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे। जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों के खै। मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी। कोई ऐसो रे सुख दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी। तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे।

चंदन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पे त्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा हामन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा। सौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना। साच ना लागे मैल क्या मल धोइए। गुणे हार परोए किसको रोइए। विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे। आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे। आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल दिख पर हरे। सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नामनो। गावे गावन हार सब सुहावनो। साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते। तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते। आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया। गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया। कहन कहे सब को एके वड आखी है। हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है। सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा। पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा। आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई। नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई। सनासरी मेला पहला। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो। साचो साचा नाऊ

फिर संग मूठड़ी ए खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटई पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होती, गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी, तन जोबन आख की छाया, बिरद पय दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण, छूटी झूठ विछुनिया, बूढ़ी कर का लियो गुर कह पाए चलो, साचा नाम से आए पावे सुख महलो, हर नाम से आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे, निज कर जाए बह सत पाए, हम दिन नाल प्यारे, विन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सब आए, नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए, फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती, गुर कै शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी, निव निव भगत करे, माया मोह जलाए, प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती, लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण, फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार, जे फिर पावे जियो,

रहनी। गुर शब्द ना माने फाई फाथी, सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे, गुरमुख सहज समाए। तन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो। हर भगत सुहावी साचे भावी, पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला, तिस रावे रंग राती। गुर शब्द विगासी सोरा वासी, फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई, तिर कर सो है नारी।

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाए जियो। गुण गाए विगसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अंदिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अंदिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन

सत्संग हर गावे जियो, अमृत हर का नाम साध संग रावे जियो। तब संग साधु इक अरादु, जन्म मरण दुख नाते, तुर कर्म लिखिया साथ सिखिया, कट्टी जम की फासे। तै परम नाथे छुटी गाठे, जम पंथ मूल ना आविए, जिनवंत नानक तार कृपा, सदा हर गुण गाविए। नितरिया तार एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो। दुख हर्त करता सुखे स्वामी, शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखरा, पल एक माहे तराया। पूर रया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नानक सदा सिमरी, सर्व दुख तय पंजनो। आप लिए लर लाए कृपा तारिया जियो, मोहे निर्गुण नीच अनाथ प्रभ अगम अतारिया जियो। दयाल सदा कृपाल स्वामी, नीच थापन हारिया, जी जंत सब वक्त तेरे, सगल तेरी सारिया। आप करता आप पुगता आप सगल विचारिया, बिनवंत नानक गुण गाए जीवा, हर जप जपो बनवारिया। तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो, नित जपे तेरे दास पुरख अतोले जियो। संत रसन बूठा आप तूठा, हर रसे से मातिया, गुर चरण लागे महा पागे, सदा अंदिन जागया। सद सदा सिमर तब स्वामी, सास सास गुण बोले, बिनवंत नानक।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका। रहाओ जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहां निहोरा। रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोके जैबो, ओछे तप कर बाहुर एबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही। रहाओ सोबा राज बिबे बड़ियाई, अंत न चाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम।

राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही राव। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, बारह जोजन छकर चले था देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई, दुर्वासा से करत ठगौरी जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो, पाछे बौर न आवन पावो अमृत बाणी करते उचरो आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ, जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बाल।

रे मन रामैया, बारिक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रिक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा, असदा अस उसदा हर का बागरा, नाचे पिंदी मह सागरा रहाओ।

कारणा जम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे मादो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पै उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन्म दे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातिक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारी। कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तो खीले हरी। कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटेरी। कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ। उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे। पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाती कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती।
काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे। कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी पगत करंते, तिनके काज सवारता रहाओ। दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का, गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी। जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे, इको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया, गुरहास तरयो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूर पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाखा, तिन साधु चरण न सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। जैत सरी मैला चौथा, हीरा लाल अमोलक है पारी, बिन गाहक मीका खाका। रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा। मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा रहाओ। मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा, तिन कर रतन न लाखा। ते उजड़ परम मोए गावारी, माया पुअंग दिख चाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाने, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा, हम बारक कछु न जाने, गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम, कर लीजे मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खुलाना रहाओ। गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे, मेरे प्रीतम नाम पराना। दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, ज्यो अमली अमल लुवाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर भाग पुराना। तिन हम चरण सरे वे खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मिलाना। तन तन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभु को नीरो। बेकुमार बेअंत बढ़ दाता मने गहीरो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभु को। जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उज

तेरा संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग पर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहा ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याज न काई रहाओ दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपाते महा बिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिनसे हर सेवा नेचल गोविंद काम भगवंत भगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गो।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रचियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा तै मरबे को बिसरत नाहिन ते चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार पर्यो शरनागत अभय दान प्रभ दी जय। जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहा। जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो।

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। छंत। सुन यार हमारे सज्जन इक करो बेनंतिया, किस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, किस दस प्यारे

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पूरा।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याये त्याये सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख तरम दूते डिठिया किर्त कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तार।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्याओ सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

छोड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम खिन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ।

मन वसंदड़ो सच सो नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नान।

छतर चमर तक आसनं रटंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरं।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रसमिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

آٹھ پہر ہر دھیائے کے منیچ پجائی وڈے بھاگ ست سنگ ہوئے۔

जपंत नानक हर हर हरे। छड़ियो हब आपे लगनो चरणा पास नठ

करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तने। दयाल

सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया, हर पादर हर प्रभ केरा, हर रंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोग विकार जिना मन लागा, हर विसरिया पुरख चंगेरा, ओए मनमुख मूड अज्ञानी कहिए, तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुर मस्तक भाग लिख।

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंगियानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान ना कियो, इक निमख ना कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार ना कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग न पायो।

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त आन न कथू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए परापत ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। ठोडी महला पंजवां। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दास संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलायन राव, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तापन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहा ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे, टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास, संत प्रसाद वैद नारायण। करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता। नानक हर हर टेक, टोडी महला पंजवा।

हर हर नाम सदा सद जाप पार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप रोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

कछु ना थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके ग्रह।

देखा गुरमिल परम गवाया है। ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा। गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

अगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासित मिट्यो रे। जा को लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत। रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान। रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ देह जिस रव रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कबो न मरते चूर कंद बंद दिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पै विस्मादा आन न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंत न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बोर कचना विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा

पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन, छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत, बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ, पंडित होय के देख बखाने, मूर्ख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ, राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुख

कुम्हार के पर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणवे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मदे देल गो माली के कर केल अच्छे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद अच्छे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे राम

सुन मन अकत कथा हर नाम। रुद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम। रहा नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम। नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको। गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो। जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संते किस देवो। जिन हर मीत मिलायो किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हमें रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। रहाओ जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत।

सारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षों प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर।

आया सर्व सुखर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज तुलंग महला पहला कर पहला

तरम दो छपलोए कूर सिरे प्रधान वे लालो काजिया बामना सीजल थकी अगर पड़े शैतान वे लालो मुसलमानिया पढ़े कितेबा कष्ट में करे खुदाए वे लालो जात सनाती हो हिंदवानिया एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोयले गाल में नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गुरु नानक बावे माखपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आवन अड़त्रे जान सतान में होर भी उसकी मर्द का चेला सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंश कर झूठ तब जाने।

अजन सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन से आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए तंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्राप्त।

बोले प्राणियां कुदराते दा सृजनहार जिन पैदा तू किया सोई दे आधार जिन उपाय मेदनी सोई कर बासार कट कट

हरकिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना सा हर तेरी उस्तक है जो हर प्रभु पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभ नाले कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया कोई आप छुटे परवार सो सब जग छाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो

से आप हर पाया हर दर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पी जय पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ है गुरु विटो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा हो वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए

जागले हो रे मना जागले हो कहां गाफिल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुरु गाय है सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी क्यों जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रखतन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी।

देव कतेव उत्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना सिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान म्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर होए,

क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा

दूध करम कुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशल कामा रहाओ। ए मन इसी हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन दिग अमृत पावो। मन संपटे जित अक्षर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहें कहे कह जावे

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत खोद काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाचर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सो चाकर होए, जल तल मैयल रव रहा।

तीरथ मंजब सन कुट कुट जिया खावने बगे ना कहियन। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम न आवनी ते गुण मैं तन हन। अंबले पार उठाया गुगर वाट बहुत अपनी लोड़ी नाल हों चर लंगा कित। चाकरिया चंगियाईया अवर सियाणप कित नानक नाम संभाल तू बद्दा चुकै जित। सूही महला पहला जप तपता बंद देरला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एक नाम मजीठड़ा रखा मेरा चोला सद रंग तोला राव साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़ी है मेले दा सोई। मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है खाचा सोई। हमें मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला। नान से तह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा। सुही महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर पर तार सी। तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देवे दिखिया। चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मते कोए चाहे उसारे साज जाने सब सोए। नाव नानक।

पांडा हच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी, गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी, एक द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वर्ताए सी, मत को जाने जाए अग्गे पाए सी, जे ही कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी, चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल तार सी, सुही महला पहला। जोगी होवे जोग वे, पोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदना सुनी जय पाई, जे तो बह अलाए रहाओ, जैसा बीजे सो लुने, जो खते सो खाए, अग्गे कुछ न हो गई, जैसा निशाने जाए, कैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित ना आवे सो दम दिखा जाए, ए तन वेची बैकरी जे को ले विकाए, नानक कम ना आवे।

जोग ना सुनसा, जोग ना दंडे, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई, रहाओ, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिशंकर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाये, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाये, वाजे बाजो सुनजी वाजे तो निरपो पद पाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाये, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कहते दीखिया लेवा, कहते मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल कल में

इन विद चित रहावा। आपे कंदा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरख तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्तुर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राज रंग रसमान, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर दौड़ न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रवचित न आयो मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाते किलिप पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत्संगत मेलो संग, निरसंगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हृदय सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करे वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुवाई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुर मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभ प्यारा टूट टुडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक सुखा।

नानक हर रस हर रंग समावे, तूही महला चौथा। जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अनत साद लो भाई। रहाओ गुरमत रस रासो उर्धार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हों मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदर दासी सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पै

जो दूजै पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

तुमरी मैं मां बरना ताको तू खाकर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम कर सोई ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब मैं कुछ बिन अवरना कोई रहाओ मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुद आ गए अरदास मैं होर साओ ना ही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख तुझ ही पासे विचे धरती विचे पानी विच काश अगम तरी जय बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जब परम को दूर की जय हर की वड्याई देखो संतो हर निमाने आमान दिवाए जो धरती चरण तले के ऊपर आवे त्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने क्या तुद पे आख सुनाइए बुरा पला तुद सब किस तू जाए जेहा को करे तेहा को पाए मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने बुरा पला तुद सब किस तू जाए तुद पावे तिवे बुलावे रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस पगत कराए इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मनमुख तंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख तेरी वड्याई तू है जाने सब तुदनो नित त्याए जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर जिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए मेरे राम हर जन अरोग भय गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर हर।

कर सकी है, अपना कीता किसी ना होवे, जो हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके, जो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कार लाया, जिहा तू हुक्म करे तेह को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी, कोई सेवा करो जे किस कीता होवे, इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हौ आख ना साका, हौ मूरख मुगद निचान, जन नानक को हर बस।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाये, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। तैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत रिझाया, वस्त्र लीना गुर परम चुकाया। सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विछाई सर्द अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया। सुही महला पंजवा। कुमक्यो हियो मिलन प्रवताई, खोज चरयो देखो प्रह जाई। सुनत सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई। किन विद हीरो तीरे निमानो, मिलता जन हो तुझ कुर्बानो। रहाओ एका सेज विछी तन कंका, तन सूती तिर सज्जा गंता। पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे तिर।

सेव कमावो क्या कहरी जाओ विद पित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को गिर।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुकराता। कौन नानक प्रभ बिनु सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वड़ियाई, तुम सुखदासे पुरख वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो ना।

जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता।

पाम वलोवो संग नैन पतीरी, जहां पठावो जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी। रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मुझ निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची देह मान अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया किन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रव मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

का नहीं जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पव जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाये, आठ पैर हर हर जस जाये, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल से लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला, सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा।

साजन सुत बंद पाई, जब तक देखो हर संग सहाई, जप मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा, सुन मन तन से सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा बुझ

कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना, रहाओ पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा, दीन छदाए दुनी जो लाए, दोही सराय खुनामी कहाए, जो तिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान, रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच सा।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित कोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक ना।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत से प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

आद गावें गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करें बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद रे पाज दिन

परण पोखण संग औद बिहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साध संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से। गुर पूरे मिल पाप जायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याय। पूर्व लिप्त हुए सांप पाई है, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संत रवाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूथे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंदिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उदर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण मंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा और न कोई, आपके थम्मे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। सुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग परा

अपना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इह बड़पना माया लपताए तीसन पीस ओट कामरी सुखमन संतो खाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ प्रभु आप करे कराए साथ साथ सिमरत रहा नानक दान पाए उही मैला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा पाई नीत सुत

न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

पालना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अन कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहुविद क्रिया पर को हिरिया। दिखना क्रिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा। रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ बहुविद रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय। सात संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, किन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पए निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पए तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा

परम दया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुरु पूरा तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब

चाहें सच्चे से पी राते सच्चा सुख सच्ची वड्याए जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पी।

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे। जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला, सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा। तुद चित आए मां आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, दयाल होए जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याए।

तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाहीं, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रीणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावे।

ठग मुठी कूड़ियार जियो सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो रंगन वाला सेवी है सच्चे से उचित लाए जियो रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन नाही जियो अवगण मुठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

से पशुआ से तोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी पुख जियो। बाकी वाला तल भी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खात रले मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। बिन शब्द तै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुरु।

लाल सामन मानिया गुर पूरा पाया। हौ जीवा गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे। मूरख मन समझाए आखो केतड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना। मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है। गुर की कार कमाए लावा तारे आणिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

आप थाप थाप शब्द निवाजिया देही पसम रुलाए न जाती कह गया आपे रह समाए सो विस्माद कया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरुमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते। गुरु का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपे। गुरमुख हो वे ता एको जाने, हों में दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो, जिन साचे स्यों लिव लाई। शब्द चीन आत्म प्रगासिया, सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे, गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे। जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे, विखटे संसारे। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर पाए। साचा साहिब सब सिफत है, साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है, हों में विच्चों जाए। आपके दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता, गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए। जम काल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। असठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए। सच्ची सिर्फ सच्ची सलाह, पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा, गुरमत कह न जाए। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी, कृष्णा अग्न बुझाए। गुर के शब्द राता सहजे माता, सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने, गुर के पाए प्यारे। सच्ची वड्याई गुर ते पाई, सच्चे नाए प्यारे। एक को सच्चा सब में वरते, विरला को विचारे। आपे में ले ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरते, गुरमुख कोई जाने। जमन मरना हुक्मो वरते, गुरमुख आप पछाने। नाम से आए ता सब गुरु पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवे, जे विच्चों आप गवाए। सोही महला तीजा, काया कामन अब सुवालियो। फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागन। गुर का शब्द समाले, हर की भगत सदा रंग।

पाया अंदर सब कुछ वसे, खंड मंडल पाताला पाया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईए, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, ना ही नाम पाई है गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही कां जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिए वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन, निंदा पली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका नरके कोर पवन, ये मन जैसा सेवे तैसा होवे तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना कहना किछु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए, ओए अमृत परे परपूर है ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ पागी जे

मन मुख मन ना पिजई आत्मै ले चित कठोर सपै दुज पियाई अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर्ज मैं वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

सबना का प्रभ एक है, दूजा अवर न कोए। गुर प्रसादी मन वसे, तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसे सब थाए। मंदा किसनो आखिए, शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आखदा, जिचर है दो माहे। गुरमुख एको बुझिया, एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी, जो प्रभ पाए खाए। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदिया, महला चौथा कर दूजा। इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसके आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करें तो सतगुरु मिले। हर हर नाम से आई रहा, जे सुख देहे ता तुझे आराधी। दुख भी तुझे ते आई, जे भुख देहे ताई ही राजा। दुख भी सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी। विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा। जो देवे सो खाई, नानक गरीब कह पया द्वार। हर मेल लहो वड्याई, अखी काड करी चरणा तल। सब करती फिर मत पाई, जे पास बहा लेता तुझे अराधी। जे मार कढे भी त्याई, जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा। जे निंदे ता छोड़ न जाई, जे तुद वल रह ता कोई क्यों आखों। तुद विसरे मर जाई, वार वार जाई गुरु ऊपर। तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना। हर तो दर्शन कहताई, चखर चांगी मीह वरसै। पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा। गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यों धरती सोब करे जल बरसे, त्यों सिख गुर मिल बिकसाई। सेवक का होई सेवक वरता, कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै, गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए, होर नेफल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना, सोया मन जागाई। इक दान मंगे नानक बेचारा, हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वड्याई। गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वरसे, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा, अष्टपदिया कर दसवा। इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने। तन मन होए निहाल, जा गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसाहो, गुर पूरे ते पाया। अमृत अगमा थाओ रहाओ, हौ सतगुर वेख विगसिया। हर नाम में लगा प्यार, कृपा करके मेले अन पाया मोख द्वार।
सतगुर बिरही नाम का जे मिले ता तन मन देओ, जे पूरब हो वै लिखिया ता अमृत सहज पियो। सुतिया गुर साला ही है, उठदिया भी गुर आलाओ, कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हों ता के तोवा पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए, सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं किस देखन का चाहो, हों तिस बिन करी ना जीवो, बिन देखे मर जाओ। ज्यों मछली बिन पानी है रह न कितै उपाए, त्यों हर बिन संत न जीवई, बिन हर नामे मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ, मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा, हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवे माए, मैं तार सच्चे नाम की हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामों दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अकत कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए, किस देवा मन अपना निव निव लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान, सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा

कै संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद के वस्तर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कछु सियानत उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यो रंग जियो। तिन स्यो प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सजना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विसनी कूड़ कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरै, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगे पैदा जाए जियो, ऐखे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत न पाये, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांजी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुही महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां, काफी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जे पुल्ली जे चुकी साई, पी तहिं जी काडिया, जिना ने हो दू जाने लगा, चूर मरों से वाडिया, हौ ना छोड़ो कंठ पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महिंजा आसरा। रहाओ सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझू पर बहुमानिया, जा तू अंदर ता सुखे, तू निवाणी मानिया, जे तू तुठा कृपा निदान, ना दूजा वे खाल, इहा पाई मूह दातड़ी, नित हृदय रखा समाल। पाप जुलाई पंद पौ, नई दर्श दिखाल, श्रवणी सुनी कहानियां।

मैं कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हव बदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे। रहा मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार।

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दरसावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हों आपको बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया फसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिकड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु

जोगन बाद गवाया वर कर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सह न पाया सतगुरु पूछ न मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बालकन रड़े का बिन फिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे किसकी बलराम जियो रव रहा जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभुवन कंत्र वै सुहागण अवगणवंती दूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड न मैले वैसे नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहरे बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रग करे बलराम जियो किरत पाया करते कर पाया मेट न सके कोई जान जी ना उन्दर है ने केवल रव रहा तिहु लोई।

बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पाइये बलराम जियो। रहती देख दूर फिर रावी कर सोइये बलराम जियो। साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने। संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने। सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए। नानक विछड़ नौ दुख पाए गुरमत पंख समाए। राग सुही महला पहला संत कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए साचे मेल मिलाए सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। अंदिन मेल पया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तप पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मन तन अमृत पिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना। अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम, मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाई,

प्रभु दूर न होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरै सताई है नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलोआ सरताजा राम हों विषम कई देख गुणा अनद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोब सेती पंच शब्दी आया जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हौ बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सो गा दिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सो से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होय रलिया जी सेती गह रहे सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हौ बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वे वासला कड वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल साज करी जय सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चलिए पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्लिए जिथे जाए गई।

फूलड़ा होए। जे होए फूला जाए कही है आप सरका क्यों फूले, सुने देखे बाज कहे है दान अन मंगिया देवे, दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई, आप करे किस आखी है होर करे ना कोई, सूरी मेला पहला। मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई, गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई, सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले, इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले। परपंच मोह विकार था के कूड़ कपट न दोई, मेरा मन राता

कीमत होई, अंजन कैसा अंजिए, जैसा फिर पावे, समझे सूझे जानिए, जे आप जनावे मार्ग पावे, आपके मनवाले।

साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया। अंधा आगू जेथिए क्यों पादर जाने, आप सहमत होछिए क्यों राह पिछाने। क्यों राह जावे महल पावे, अंध की मत अंधली, विन नाम हर के कछ ना सूजे, अंध बूढ़ो तंदली। दिन रात चानन चाओ उपजे, शब्द गुर का मन वसे, कर जोड़ गुर पे कर बिनंती, राह पादर गुर दसे। मन परदेसी जेती है सब देश पर आया, किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मंत्र देसी जेती है सब देश पर आए। गुरमहली कर अपने सो पर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सत सबद पतीना।

ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न पुले जय जयकार करे तुद पावे बुरके शब्द अमूल्य हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई नानक जिन कर देखिया देवे मत साई राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरु आप

नाम कह सुनो जन पाई सुख सोई लड़ा हर त्याव। सुन हर गुण कीने सहज सुभाए गुरमुख सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण को पागा। अंदरों दुर्मत तूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अंदिन हर गुण गाए सुन मन पीने सह सुभाए। जुग में राम नाम निस्तारा

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। जय जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख हो वे। हो मैं सबद जलाया राम, हो मैं सबद जलाया। मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती। गुरमुख आख वखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल। नाम सच्चा वन भाया, नानक भगत सोए दर साच है। जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात सत है। भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे। जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने। पै भगत मीठी लागी, अम जिन भगत करे दिन राती। कर ही मैं बैरागी। पंक्ति

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगता के कर साचा, हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया, सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया, हर जन ऊंचे सभी ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया, सुही महला तीजा। सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होई विचारो राम, हौ मैं सब किलब काटे, साथ रखिया उधारे राम, सच रखिया उधारे दुत्तर तारे, फिर पाव जल करण न होई, सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच बिठा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे सब सोई, नानक साचा साहिब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम, सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम, साचे नाम सुख होई, मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा, ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाय प्रगासा, जिन्नी सच जाता से सच्चे होए, अम दिन सच ध्यान, नानक सच नाम जिन हृदय वस्या, ना बिछड़ दुख पायन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, चित का सोहला होई राम, निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम, सब सच वर्ते सचो बोले, जो सच करे सो होई, जय देखा ते सच पसरिया, और न दूजा कोई, सच्चे उपजय सच समावे, मर्जन में दूजा होई, नानक सब कुछ आपे करता, आप करावे सोई।

राम तित तंग मैल ना राती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वडियाई प्रभ रावे रंग राती। फिर रावे रंग रातड़िए फिर का महल तिन पाया राम, सो सहो अत निर्मल दाता जिन विच्चों आप गवाया राम। विच्चों मोह चुकाया जा हर पाया, हर कामन मन पानी, अंजन गुण गावे नित साचे कच्चे अकत कहानी। जुग चारे साचा एको वर्ते बिन गुर किने ना पाया, नानक रंग रवे रंग राती जिन हर से की चितलाया। कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम, गुरमति मन निर्म

दूर वसे, टिकना मन आधारो राम, टिकना मन आधारो सिरजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलक लखाया, सहजे आद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो, काट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम, गुर सेवन सब गुरदाता हर हर नाम समाया राम, हर तूर देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गवाए निज कर पाया वासा।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमेय गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नाम सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

पूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए हर चीजड़ी लाभ मन चाव पया बैरागिया बलराम जियो

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मंथन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंजन हर लिवलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर।

पूजा। गुरुमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभु पाए, मिलिया सह सुभाए, अंजन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहे लिवलाए, वड्या पाग गुर पूरा पाईए, अंजन नाम से आए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए, संगत संत मिलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए, पै पवित्र शरीरा, दुर्मत मैल गई परम पागा, हो मैं बिंठी पीरा, नदर प्रभु सत्संगत पाई, निज कर हो आवासा।

सात शब्द विलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

आई राम अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे।

पाथ न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन बिद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वडिआई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूरी महला चौथा हर पंजवां।

हम मन सन देवा सतगुरु मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजू।

चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम।

सेव ठाकुर नाथ पराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

आवन लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए, हर हर दुख नासे, रह

बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत मुस्तरया, हर चरण के आए सब फल पाए मिटे आवन जाना। पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जप देखा तत सोई।

कर मेरा मत सोई, कृपा की जय सौ मत दी जय, हाथ पैर तुत्य आई। गर्भ ना की जय, रेण होवी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम। हो पिछ नाही एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे। ठाकुर भाणी सा गुणवंती, तिन्ही सब रंग माना, नानक की तर तू है ठाकुर, तू नानक का माना। हों वारी वंजा कोली वंजा, तू पर्वत मेरा ओला राम, हों बल बल जाई लख लख लख बरिया, जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यो मन माना, प्रभ जी पानी पई निकानी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला, कहो नानक हों निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा, साजन कोठ सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पौना राम। जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे, अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्व रहा पर पूरे। ताकी शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ को बलिहारे, नानक सब कुर्बाना। ऐसा गुरवड का गी पाये, जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलविक उतरे, हर संत तूरी नित नापे राम। हर तूरी नाइये प्रभु ते आइये, बाहर जोन ना आइये, गुर चरणी लागे प्रम को पागे, मन चिंदिया फल पाइये। हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संतापे, नानक सो प्रभ जी का दाता, पूरा जिस पर तापे। हर हरे हर गुण निदे, हर संतन कैवस आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे, तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा तारी, सफल जन्म हुआ तो पागा, हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिय, मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच सदाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ते आया, सगल मनोरथ पाए, सांस सहज आनंद कनेरे, गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी, थान थन कर साई, कहो नानक कार सगले पूरे, गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर आरा दे मेरा राम। हर आरा दे जम पंख सा दे, दूख ना व्यापे कोई, जल कल मैयल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाथे, प्रभ नेर हूँ ते नेरा, नानक को प्रभ।

आए राम। जब एक प्रभु अनेक रव्या, सर्व मंडल छाया, ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए, एक दर्शन नानक बिकसे, आप ले मिलाए। सुही मैला पंजवा, अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, उत्पाई सिख बिगाते, गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन एओ थान सुहाया। कर मंदर हट ना ले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम अराधे, कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ कया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर कृपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज पगद पर पंजन, अनहद वाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवे। हर नाम आराधे मैल सब काटे, किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बहु न पाई जोनी है। नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साधे छुनी है। सुही महला पंजवा, संता के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध रिद दीने, करते तोट ना आवे काई राम। खात खर्चक दिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई, अंतर जामी पाया। कोट बिगन सगले उठ ना थे, दुख न नेड़े आया। सांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूख सबाई। नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे, साथ संगत संग बनी। जिन उद्दम की आकाल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। अखर तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक सगद आधारा। गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो। गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तने अमृत पीजै। बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी। ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने। पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए।
ਕਿੱਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਕਾਲੇ। ਖਟ ਖਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਵਾ ਸਰਨਾਗਤ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ। ਹਉ ਬਿਸਨ ਪਈ ਜੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਆਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸਾਰਾ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਜੀਵਾ ਠੰਡੀ ਥੀਵਾ, ਤਿਸ ਜੇਵਲ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਆਦ ਅੰਤ ਮਦ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ ਸੋਈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ, ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਹਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋਡਾ ਜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੀ।

से बार राग दोख से न्यारो नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुनजन त्याया नानक शरण कृपा ने स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सूहे वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली करतार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवारे अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हो मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीद सचाओ उल्टी सपत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्द सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोथी है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश कामन कुलखनी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सहरे बहु सोभा पाए तिस पूज करे सब संसार ओह रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इहु जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पो आइए मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

तू है वेश तिरकिने न पायो, मन मुख दज मोई गवार। सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार। मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो लाल करो सिगार। आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार। नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूर कुटंब है मन मुख मुग्ध रता। हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता। सिर उपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता। फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन। नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन। सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए। जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए। पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया। नावे जेवड होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या। कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विकार। चलन सार न जाननी काज सवारन हार। महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए। नानक नाल न चली फिर पछतावा होए। महला दूजा बब्बा चक्की जो करे

गुरमुख सदा सलाये करता करे सोई। श्लोक महला दूजा, जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दी बाण गया। महला दूजा, तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता,

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तौ नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार सेजै तंत न आयो एवें पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोई मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत कमाहो मस्कत लहो मजूरिया मंग मन खसम दराहो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवे न फिर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर। श्लोक महला पहला नानक इन जाल जिन जले नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हक नाम बड़े तित निबंद ताल। महला पहला नानक मन के कम फिटिया गणत न आवही किती लहास हम जा बसे ता तका नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायन हर सच कुरमान सदा ने चल रव रहा सो कृप सुजान गुर प्रसादी सेवी है सच सगद निशान पूरा खाट बनाया रंग गुरमतमान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान। श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरयान खोटे खरे परखियन साहिब कह दीवान। महला पहला नान चले तीर्थी मन खोटे तन चोर इक पौ लखी नात्या देखा चढ़िए सहोर बहर धोती तूमड़ी अंदर विसल कोर साध पले अन्नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएदा जगत अंदर लाया इक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दैदिस ए मन पाऊंदा गुर ठाक रहाया नावे नो सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया। श्लोक महला पहला दो जीवे चौदह हट नाले जेते जी तेते बन जा रे खुले हट हुआ।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कहने लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए हर नाम सुनावे सतगुर सेवा सतल है सेवे फल पावे श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालोए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की।

राम को नाम न कभू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके कुटंब जीवाया, मरती बार इक्सर दुख पाया, कंठ गहन तब करण पुकारा, कह कबीर आगे ते ना समारा। सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या कर सी पियो, रैन गई मत दिन भी जाए, पर गए बग बैठे आए। रहा काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया। रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया तया कराया, कहो कबीर तेरी नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित।

जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा। जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हों लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सब कावे, रैयत बसन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग के आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, सब कट की तरह हार चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई, यह पन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा, कर की नार उरे तन लागी, को तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूही।

कैसाई की मैं सार न जानी, जो गुण कोई पाछे पछता नहीं रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर विहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपालता प्रभु मिलाए। विद्धन कुही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभु साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोतीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ न लाए कुसुम जल जासी टोला रहा, एक पापी में पतली सह केरे बोला। दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

پہلا چوک دے کر پہلا تو سلطان کہاں ہو میاں تیری کون وڈائی جو تو

जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या शिकराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना औका स्तन पाई, भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमे नाउ न जाए। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेश कलंदर, कठी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे

Hello. अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध।

तैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलग।

राज रूप चूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार चक छोड़ी सहसा नहीं कोई बाप जिसे वे जात न होए एक एक को ना ही तो कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मंगते माया थाक रहे मन खाते पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरु बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम खुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुरु शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह न सके खिन सतगुरु बूझ बुझाई रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैराजन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिया गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों जित हूं खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे रहाओ तू दयाल दया पत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माए निस्तारे नाम साध होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल्य क्यों तोले आ जाए दूजा होए तो सो जी पाए किसते दूजा ना ही कोए किस दी कीमत किक्कू होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा ले ता सच समाए आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या कोता है बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहत्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अभिमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी सब कोई करो दिखाव खियाना आपे गुरचेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तिने कोई चाल है जो हर पावे भगवाना कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा इक ना कर मैं देव ले आई इक परम पवे अभिमाना बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे देखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ाई मत को करो गुमाना
सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माए समाना ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा रहाओ। चौह जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा जुग जुग आपो अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना, कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हों तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए, हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए। गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सब रंग आए, निज पर वासा हर गुण गाए। रंग चलू ले हर रस आए, यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुरु ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा। जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा, नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा, पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई। हों मैं माया शब्द जलाई, दर्शा चै गुर ते शोभा पाई। जगदीश सेवो मैं और न काजा, हम दिन अनद होवे मन मेरे। गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई, पूरे गुर ते शब्द गुजाई। जीवन मरण को संसर वेखे, बहु न मरे न जम पेखे। कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुरु दिखाए गया अभिमान। सब ही लागा सहस्यान, हम जिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम से आई। जह देखा तेरे समाए, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई। पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया। गुर का सब तक मीठा लाया, नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद। उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिख लिखे गुरु पाया। हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना। जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कौन कौन की गत नित कही है, हर की ये पतित पवन्ना। ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे, हर उद्रयो करो सरना। प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण, हम पापी राख कपना। हर दासन दास दास हम करियो, जनमानक दास दसन्ना। बिलावल मैला चौथा, हम मूरख मुगद अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम है रामा, गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर तारे, हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हर जति है वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा, कोय फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा। हर जन नाम आधार है, तुर पूरव लिखे वड कर्मा। गुर सत गुर नाम दृढ़ाया, जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा, हमरा चित लुगत मोह बिखिया, बहु दुर्मत मैल परा। तुमरी सेवा कर न सके, प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा, जन ऊपर कृपा प्रवतारी, मिल सतगुरु पार करा। रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी, हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लगे से उदरे,
जो संग पाकत लोह तरा साकत नर होची मत मदन जिन हर हर सेव ना करा ते नर पाधीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे है कल युग खेवट गुर सबत करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाई है उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरतो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार गम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनित उपाव चितवी है बहुत तेरे सा हो वै जे बात हो वै नी अपना भला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित नाच तैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जन तैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बद्धिक विच माया फिरे फिरंदे कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वर्त है जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत पगत पारनो हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाय हर दुख विसारनो। राव हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसार हमारा गुर पेटिया है मुकुट दाता हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निराशी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नाम किस पगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौक देख हर पहला।

कर कृपा मुह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो क्यों तरिया बिछिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्प पुयंगा हूँ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जहाँ हुए कृपाल सं गुरु मिलावे हूँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर किसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया किस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनग रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल महला तन्यवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्पवेव तरत पुनीत कई गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगाव जाका अड़ पर पाप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने मूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण ली जय लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे था कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ दसे प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम अवताज चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन सन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान पां बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला कर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नामे ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नाम की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अराधिय निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुगद को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे बिलावल महला पंजवा दिखे बन फीका त्याग रि सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी ना होत जियो मान महत ना सकती काई सादा दासी थियो नानक से दस होगा वंते जो प्रभ अपने कियो
हर चंदौरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसोवड पागनी सखिए संता संग समाई है कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाइए कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाइए प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक त्याई है दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो का पारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जत जाइए तप दिश पाए रहाओ अनेक

निर्गुण एक रंगा, आपे जल आप ही तिरंगा, आप ही मंदिर आप है सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आप है जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभु सब ही मुक्ता। बिलावल महला चंदवा, आप उपावन आप सुधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन वचन आप ही करना, आपन विपो आप ही जरना, रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना, आप ही अचल ना जाई चलना, आप ही दुख आप प्रगटना, आप ही कट कट आप लिखना, आप से अवगत आप संरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, तूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वड़पागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे,

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वड पागी पाईए, मिल साधु हर नाम त्याईए, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा।

ना रहाओ, अंध कूप से पर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ मीता, चरण कमल सो लाइय चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहाओ, सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर मैं आया रहाओ, भगत वचल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, तार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दूख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ, एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ दिखिया फल चाख्या, पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ, तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया, महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया कटल विसरिया, वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय, सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी, अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ, सगल संजाम करे प्रभ आपे, ऐ मनोर सो प्रभ जापे, हर कर्म काम मोका दाता, पूरी तई सिमर सिमर विदाता, साध संग नाम करंग मान्या, कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ, हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सातक नर थीवे, राम नाम हुआ रखवारा, चक मारो सातक बेचारा, निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपक फाक गले सिर पैरे, कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दो पदे।

रहा हो। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक बिसरना काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभु हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए। गुर दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अतत कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुरु सदगुरु पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से। अनंत करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल। दिन दिन छिजत विकार करत, औध फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी। उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया। सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया। कारज सतगुर आप सवारया, बड़ी आरजा हर गोविंद की। सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंत्रिण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहाओ। साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू तै जंजाल। आपे सतगुरु आपे प्रतपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुण गान। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई। नानक गुरु पूरे सरनाई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुरु कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ। जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की सरनाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सग ले गए, बिन से ते रोग पार। ब्रह्म तू बख्शिया, संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग। गुण गावो नित राम के, ए अवसद जोग। आए बसो पर देश में, ए तले संजोग। नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल। ऊट सिधारे छत्रपत, संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना, ए पुर की टाल। बहु जोनी जन्मे मरे, बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे, नित जपे गोपाल। सिमर सिमर नानक करे, हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख, पूरे गुरु दीन। सदा सहाय संग प्रभु, अमृत गुण चीन रहाओ। जय जय कार जगत में, लोचे सब जिया। सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु, कस बिघन न थिया। जांका अंग दयाल प्रभु, ताके सब दास। सदा सदा वडियाया, नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा, कर पंजवा चौक दे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू कर बार। बिन सत बार ना ला गई, ज्यो कागद बूंदार।
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए करबार रहाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाल से सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो रहाओ। करो बेनती अटकनी ए जियो हो मागो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो हृदय प्रवास प्रगट तया निष्बासर जागो शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो कहो नानक तिन पाया तन मन शीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवड़ पागा मैला कदे न हो वही नहला गे दागा प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला सफल दर्श तेरा पार जम

तुझसे बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगध उधारे। बिलावल मैला तनवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय, कही है काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा रहाओ, जो तुम राखो त्यों रहा अवर नहीं चारा, नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल मैला पंजवा मृत हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे, सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अकागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाए, जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी, दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुरु की शरणा। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल सतर्ग कीता,

have had on the path. Sing bilai ho gayo trin mer dikhita, sram karte dam aad ko te ganit neeta. Kaman vadai keh sako beant gunita, kar kirpa moy naam deho nanak dar srita. Bilawal mahala panjwa. अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साध लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद राज मिलक तन जोगना ना मैं बिन बाद रहाओ रूप तूप सोगंधता कातर कोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुर बसे पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आ गए तगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत नाही दोलेत परम पुलावा मिट गया प्रभ ते खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया सात संग हर हर अमृत बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे दत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी तन मन अतनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक छदाई मोहे ते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन ए मन पया बिनसी अकदारी निंद चिंद पर दुखना एक खिन में जारी दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल।

दयाल जिस बात पर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत सुधार साध प्रभु तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल उपत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते छूटी है बिन से अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किच तुम ते मांगना वड पागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। लीलावल महला पंजवा, सात संगत के बास में कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहाओ हर रस चाखल त्रापिया मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिरसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हार राखिया पय प्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास के तब हुए न्याल, राज मिलक सुखदारिया अग्नि में जाल। संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान। भगत जना का लूगरा ओढ़ नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरते पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है अदवी चो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उतह छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेट साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो, संत चरण कर शीश तर हर नाम से आवो। कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेण का ले माथे लावो। रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाप मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनपते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो। सत संतोष दया कर्म शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगताया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे हर गाया। ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया। रहाओ शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानस जन्माया परमाया। नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया खे। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत गिलम करे हे। छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े ने हे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले हे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निजे सास सास समार है। करनहार जो कर रहा साई वडे आई, गुरपुर उपदेशिया सुख समर जाए। चिंत अंदेशा गणत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते पई शांत पर सत पाप ना थे, अंधकूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आसाए। पैदन से तिल लोक के पाए सुख थान, दया

कीमत कहीं ना जाइए ठाकुर प्रतापे। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तोवो ए शीश कर, कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध के बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, ओआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तू सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर के काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हो आ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर लिव लाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

पार मन से कभो ना विसरे सुर पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा कृष्ण बुजी ममता गई नाथे तय परमा चित पाई अनद भया।

कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल, छूट जाए

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपार। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुटे, जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही, जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यों तेरा खेद। दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद, नानक तिन संतन शरणागति। जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया, सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहाओ। जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तन सो खान बसंत तन, जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हर अत कना, सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या, कुन सुख में पाया। सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया, जीवतया अथवा मोया।

शीत करता करे काम को काटे, कीवी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभु की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ। बरन आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर।

प्रभ की वजाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। चोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। वस्त कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे, संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश। जय जयकार समय करे सत्थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद की लस्तुता जिन मारया।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राखन हार राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा। कर कर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकि नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समाज है, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भाग है, राम नाम जो जम जप है अंजन सब जागे, पंत मंत नह जोई तित चाप न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनुराग, आनंद मगन रस

तो कुछ नहीं करना, दुख ना लागे कदे तुद, पार ब्रह्म सितारे जम कंकर नेड़ ना आवे, गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है किस बिन नहीं होर, नानक प्रभु शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभु अपना, नाथा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साथ संग, ताके बहुर ना पाओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन इह बनियो सुआओ, नानक प्रभु सो प्रसन्न भए बाँचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास, चरण कमल का आसरा प्रभु प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लख सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

पार। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या, दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है, दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभु किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणित हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा आराध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताए।

संग बख्त सुख सहज विश्राम साल करी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगत भय संसार में फिरते तय नाम नानक के शरणागति कट कट सब जान। बिलावल मेला तनिमा रोग मिटाया आप प्रभु उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप।

हम अरबाब जानी तुम अंतर जामी, खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा। ताकि भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई, राम नाम और सब दिया एक।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन से जय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राणी।

कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तम के जात त्रिपद अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तय बिन से कहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सदगुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वडियाई मगन पे उहां संग

एक है अपर अपारा, एक विस्थिरण एक संपूर्ण, एक है प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बिरंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर कामना आवत है, जासियों राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है त्रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस त्रेरो, बिखै ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस दहे फेरावत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है। जाल पसार चोग विस्थारी, पंखी ज्यों पहावत है, कहो नानक बंधन कातन कहो, मैं सतगुरु पुरख के आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मने अधारो, चीत चितवो जैसे पान कंबोली। रहाओ सहज समायो, गुरे बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, त्रै मुख लागो जो वड़ पागो, सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा, पोत पोत अंग अंग संग।

गोविंद गोविंद मई। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इल मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन न साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित

ज्यो कालर पीत गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितव चितवित मरी है। निंदक प्रभु तुलाया, काल नेरे आया, हर जन से बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, देख सुनते सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काडे बहा परे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पई स्यानप, प्रभु मेरा दाना बीना। हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाऊं दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहाओ, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख।

अला पंजवा सदा सदा जपी है प्रभु नाम, जरा मरा कछ दुख न व्याप है, आके दर्द है पूरन काम रहा, आप त्याग परिय हित करनी, गुरते पालिया हो निधान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दर्गे का निशान, जो तुम करो

मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, किस रसना का मोड़ किस नाही रहाओ, कुल समूह उदरे छिन की कर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के गोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन ला गया है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कैसंगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते तहरा जंगा, कभू न बिसरह ही मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आदय, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, किसनो लगे न काची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भये, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ, जेते पुनः चरण से कीने, मन तन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ काज लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहाओ, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चित

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु

सूरे हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे कारज हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुटे पै जमके कट कट एक रहा पर पूरे नाम शरण पर्यो दुख पंजन अंतर बाहर के खजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर जीते संग बसे।

जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पद न कीनो, करत विकार निष्फोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन हित खाते, मुख दंता कस छीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल पया मेरे पाई नीत रहा गरीब बिराद उपाद सब नासी अंगीकार कियो कर कार सांस सुख और अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने

कंठ लाए राक्षस जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मिल

सांत सहज आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगुण प्रभ कछ ना विचार्यो, कर कृपा अपना कर लिया। अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी, नानक उचरै हर की।

आवत फिरत मद मावत बिखियाराता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश।

फूल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक है हर ला है अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस टूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण हे राग बिलावल मैला नावा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजामल जनता जिन सिमरत मुक्त पाए जी जानो।

को नाहीं। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही रहाओ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को। नेफल कर्म काहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

सब कोई कत कत बाढ़ करे दुख होई कत कहने ते रहे न कोई दिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नामो पूले थाओ न कोई मन माया बंदे हो सरजाल कट कट

दुर्मत दर्द न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नाट साला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंगाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंगा अंग कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविए अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपके अलख

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पई।

नानक जंत बजाए वाजें, जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया, हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए, सतगुर परस हर नाम समैया।

तिन में तिन तिन तह पहिया। हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया। जो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा, सतगुर परचय मन मुंद्रा।

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कहिया त्रिपत संतोष मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद कहिया अंडज जेरज सेत जुत पुज

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगाइया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। सीमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट।

नैया सतगुरु दया करे प्रभु मिले, मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ कीरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस वितों बल बल कुम गैया।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले छिन टील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताए क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल को।

ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण के आस ज्यों तरन परत परान ज्यों लोभिए तन दान ज्यों दूध जले संजोग ज्यों महा खुदियारत पोग ज्यों मात पूते हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरत निसंग मैं गले कामे बंद ज्यों ग्रस्त दिखी तंग ज्यों

चोटा खाए, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पखंड कीने मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़,

पंचपूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला इक परम पूखे मोह प्यासे इक रक्षाख सब तृप्ता से इक रंग राते इक मरतूर इक दर कर साथ।

तिस में मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

फूल शिखर लिवतारे, डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सचमन पाने, चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहया लिवलाए।

गवाए नानक नाम रखो उरधार देवन हारे को जयकार वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए आप।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुभाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, कर्मे पूला आवे जाए, सतगुर सेवे सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वक्त है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

मार न साके कोई। जिस दा साहिब डाडा होए किसनो मार न साके कोई। साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे दे वड्याई। किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए। गुरमति सांत वसे शरीर शब्द चीन फिर लगे न पीर। आवे न जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सह समाए। नानक गुरमुख वेखे हदूर मेरा प्रभ सदरया भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए आपे करे हर आप कराए। एक वर्त अवर न कोए मन रोस की जय जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी दर साचे साचे विचारी। सिखी वार सब सब सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए। सिखी वार सब आवे जाए गुर शब्द ने चले सदा सच समाए। सिखी वार ता जा सच रात।

अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख तारी, पव पव पर मैं काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक कितनी वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, कितनी वार सेवे मुग्द गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रहा समाए।

मुंड नवे नड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर को रही गोयल, सहज सब पिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया, सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो सात संगूती राम, तन सात संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे सात सात निरंजनो, शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो, जोत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अतारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने तार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला, मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे देख पवनी हठ न जाना, नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूर कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे सात शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन सो जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार भी जय शब्द सी जय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर निवेरो, संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर त्रापे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम, हर हर हर हर राख प्रभु।

गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यो जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग गुर पूरै वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आईया हो मैं बिच्चा जे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरै वड पागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरै प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारै राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम। गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विगसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मूड मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभ ते कर बिनंती मिले हर जस लाह बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह।

मिल एकत्र होए सहज होए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लागी बिलावल मेला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे दिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पाव

इक निमख पलक ना त्यागी है, जय कंठ लाई है नेह लजाई है, चरण राज मन पागी है, पगत फगौरी पाए मोह है, अंत कथु न ताए, बिनवंत नानक मिल संग साजन, अमर पदवी पावे। दिसमन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम, कर गय पूजा गही कट जम की साथी राम, गय पूजा लीनी दास कीनी, अंकुर अदोक जनाया, मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया, दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी, बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभु मिले अविनाशी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम, ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए, आप करता आप पुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

कि आओ सखी वक आओ सखी अति तिरका मंगल गावे तज मान सखी मत अपने प्री संपावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्फ दिखंडनो हुए दास दासी तब उदासी बहुत विधि न

ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जो

सगल जाको करुणा पत गतिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मोह मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोह तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते चीत चित वो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना गुण।

लोक सुंदर सांप दयाल प्रभु सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो। संत सुख सागर प्रभु पाये जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरणाई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गई दुर्चारण रसना राम प्रभु भगत वचल नह सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा कृम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत नह डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर कच्चा के नाम रहे लिलाए। महला तीजा, सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, हों मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी, सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है, गुहज गल गिरती चीक है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा, सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई इच्छे तिहा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस्ती संकोच हुआ सत रसिया मने आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दै दिस पथरिया गुर कैसे सुवाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए। महला तीजा, गुर सेवा ते हर पाई है जहाँ को नदर करे, मानस के देवते पे सच्ची पदक जिस दे, हों में मार मिलायन गुर कै शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी, गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुष्ट वडियाई वेख न सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यो बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा, रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए, हर सुख पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए, मन मुख अज्ञानी अंगले जन्म मरे फिर आवे जाए, कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए, नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मल।

किए, जो कुछ हर करावे सो ओय करें, सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो, हर संतो जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कर दिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा

महलाती जा। अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान न लागे, दुख विस्कार कमावनी, दुख वर्त है दुख आ जाए। कर्मी सतगुरु पेटी है, ता सच नाम निवला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखन बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गासिया, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनक नानक सो जन पाई, सतगुरु सेवो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दूख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कमो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे त्यो मनमुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागाती किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे परवाओ। श्लोक मैला तीजा इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुर प्रसादी नाम मन वसिया अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है हो मैं शब्द जलाया, आप करया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां दियो त्रै गुण पुल्ले हो मैं मोह वदाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चितलाया,

कोय गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होय पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह फुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करे अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुथो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला चीजा। गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विचों जाए। जो किस होए सो सहजे होए कहना किसु न जाए। नानक तिन का आख्या आप सुने जे लयन पन्ने पाए। मैला कीजा काल मार मनसा मने समानी अंतर निर्मल नाओ। अंधन जा गए कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सों दे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जो किसे क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले। अक्के कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे कैसी बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विच काला कराया। हर के दिते नाल किसे जोर वकीली।

अमर है ना ई हट विकाए गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरो हुकम बुद्ध निशान पुत्ती ताती जावाई सकी अगो पिछो टोल डिठा लायुन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शो से सब जान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल जे जे वे मुख हो गए।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे दुख सहन, पै

किस सात गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौं सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया, रस संत जना क्यों।

तू दे रे चलो तुम नतर को तक्का गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनमंता अर मिल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर रामे रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंडा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बासना तजिए न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहि समसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपयो हमारे कुल कौने राम के हो जबकि माला नहीं निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें लय उदरयो। बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पूपत सब दिल चार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा। बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील तरम जब पगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया ए मिथ्याता की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोए साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए दिन की सुनियो मत पालो जम की खबरी। बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार कुछ बिल सुर्त करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहाओ तुम तन तनी उदार

आधारी क्रम कै पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पज बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या फेकी क्या लेवा दई परपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंक बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम तजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसे न दिसे जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात मुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समान्या गुरु सासी जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब मैं देखे कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया ते अटके ले नरजा मन को ले देव जय ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध करतले सब कृपा तुम्हारी।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए पंडित सूर छत्रपत राजा पगत बराबर और न कोए जैसे पुरैन पात रहे जल समीर।

कथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किछ जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर तिस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाए। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब व्यर्थ ही जाए रहा। जो दिसे माया मोह कुटा

सुन मैं झूठ बिन सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए। गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याय, जो सुन में किलिक सब करे बिनाशा। ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाय तह ना।

बहुत कदाचार। अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी

आए मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुल उपकर दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांप शीतल मन अपना। जैसे सतप सूर बहु जलता गुर सत देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राख है सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरबचनी, किस जेवड अवर नाही किस दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिन सजाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साके है। ता मेरे मन कायत कड़ी है रहाओ, हर परपंच किया सब करते है, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बार नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौण महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जान।

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की में आई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, पग पारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझित ओढ़।

प्रेरियो तू लाग पड़े कुटुंबाए ने जो पंखी कत्र होए फिर बिछे फिर संगत हर हर चाय ने जैसे मीन रसन साध बिन से।

ओ तट पर लो निमक मझार, जा की गत निच कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा ते आए, आए न जावे नेचर तने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडारे, सगल कटा देवे आधार, सत पुरुख जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ, बाल सखाई पगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा।

सगल पूछे को करता दान, गर्भ कोर में राखन हार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट जत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जाका अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगत पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ, जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पावन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाके रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

आनंद हरनाय। गौण महला पंजवा, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया। जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई। गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास। जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता कावन लाग। गौण महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ। गुर

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम तन

सहाय राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबते ऊंच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत कोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगति सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटी।

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस पंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो।

इवै सुवाओ पद अभिमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मन तन निर्मल हो।

ओहो दयाल देहो प्रभ दान। नानक जप जीवै प्रभ नाम, गौण महला पंजवा, धूप दीप सेवा गोपाल, अनेक बार बंधन करतार, प्रभ की शरण गही सब त्याग, गुर सो प्रसन्न पय वडपाग, आठ पहर गाये गोविंद, तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद, रहाओ हर गुण रमत पय आनंद, पार ब्रह्म पूरन वत्संग, कर कृपा जन सेवा लाए, जन्म मरण दुख मेट मिलाए, कर्म कर्म इह तत् ज्ञान, साध संग जपिए हर नाम, सागर पर बोहित प्रभ चरण, अंतर जामी प्रभ कारण करण, राख लिए अपनी कृपा तार, पंच दूत पागे विकराल, जुए जन्म न कबहू हार, नानक का अंग किया करतार, गौण महला पंजवा, कर कृपा सुख आनंद करे, बालक राख लिए गुरुदेव, प्रभ कृपा

सर कोई नाही, कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पत पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांसित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़ पागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको कोई ना सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछान। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा हजूर जान।

काशवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पन।

कर कृपा दी। जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा। संत का लिया तर्क बिगारो, संत का निंदक आकाश के तारो। संत को राखो अपने जी नाल, संत उधारो तत्क्षण ताल। सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

गायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध

तार अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला। ना एहो बिनसे ना एहो जाए, आज जुगा दी रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस शीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया। पाप पुण्य का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सब ही जागे। तीन गुणा एक शक्ति उपाया, मां माया काकी है छाया। अचल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ताकी गत मित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहार जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए। राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए। सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गौण अष्टपदिया महला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद।

सब लोग संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पाए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता कह निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कह सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले कित सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर कामना।

दिन जियो दीन रे, हर में तन है तन में हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौण बाणी कबीर जियो की, हर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पूजा बांध किला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूड में मारियो, हस्त पाग कै चीसा मारे, क्या मूरत कै हों बलिहारे। आए मेरे ठाकुर।

दिया रहे, तीन बार पतिया पढ़ लीना। मन कठोर अजहूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन

होवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़बो काल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ। सुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंदिन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बात, हमको साथर उनको खात। मूड पलोस कमर बद पोची, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश।

हार शंख को बिख बिख संसार कर सीगार बह पखियारी संत की खिड़की फिरे बिचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिसका बोझ

जो लग प्राण तऊ लग संगे, नाए ता चली बेग उठ नंगे। सुहागन पावन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रख किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े पूपत राजे है छेदे। सुहागन उर्वार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये, साधु बिन कैसे अवगत जाये। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस दिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे।

उडें अन्न करें पाखंड ना सोहागन ना ओरंड जग में बकते दूधा तारी गुप्ती खावे वटका सारी अन्न बिना न होए सुकाल तजे अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जान्या तन अनाद ठाकुर मन मान्या राग गौंड बाणी नाम देव जी की कर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद असुमेद जग ने तुला पुरख दाने प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा अपने राम में पाजरे मन आलसिया रहाओ गया पिंड परता बनारस अख बसता मुख बेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सिवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पदनामा तरस पव सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण तजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा जो बिखई हेरे

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा क्यों कह गीता, बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक नी

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवाता हूँ कि गौंड जे ओ अषट तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सिरा पुजावे, जे ओ कूप तटा देवावे, करे निंद सब बेथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने, जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे, निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया, जोड़।

न जाना तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कौन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते, रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है, कबहू जाय प्याले, लोभी जियरा फिर ना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माई, एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई, ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणव

कहे नर हरि जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जा पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार करे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेरे आपे दूर आपे सर्व रहा परपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिद सागर तरिये जीवतियां नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रो रखवा।

आत करे जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले इन विद सागर तरिये जीवतियां यूं मरिये रहाओ दूजा राम करी महला पहला सुरत शब्द साखी नृसिंही बाजे लोक सुने पचोली मंगल कहताई पीठिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार ना लागे रहाओ पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे सुध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे

का नानक बोले, वसगत पंच करे न डोले, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरह सगले कुल पारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, एनस सुन समाज समावे, रहाओ, तिथिया पाए पगत पे चले, होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

ਤੇ ਪਾਏ ਤਨਵਤ ਨਾਨਕ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਦੀਠਾ ਦਾਰੂ

जा पै ज्यों सिंहासन लोए खत्री ब्राह्मण सूद के वैस नृत न पाया गणी सांस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली मैला पहला तुदनो निवन मनन तेरा नाऊ साच पेट बैसन कौथा।

प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुत आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किच किया सो किच करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दर

कौन बुझे विध जाने खुद खुद चलत आप कर चीने आपे तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत विध सोई ताकि गत मित और न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी ते तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदिया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी गुरमत पत कोई गुरमत परत पावे जन कोई जोगी जुगत सहज करवासे एक दृष्ट एको कर देखिया पीछिया पाए शब्द तृप्ता से रहाओ पंच बैल गडिया देहतारी राम कला निभ पत सारी तार टूटी गाडो सिर पार लकड़ी दिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देओगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोता बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

जा कर पहना। सतयुग सच पहें सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तै रहे चार, गुरमुख बूझे को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई। रहाओ त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम

सुखोई, गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम की आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम।

मेरे मन सतगुरु सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम तैसी कीर्त कमाई।

तो दर्जे सुख पाओ संतो ऐसी कथो कहानी। सुर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलो गुरमुख बाणी। रहाओ परपंच छोड़े सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई। सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई। सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी। राम कली महला पंजवा। आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी। ए विद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी। रहाओ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी। मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा। त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने। रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने। अचरज किस तैन न जाई बस।

पुरन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

ओड नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाछे पुस्त, कोई सुरजिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम।

पाए खिंचया सूत आई खाए जो मैं एक मत हूँ किया तय बिखरे थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया का नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वा।

जपनाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, त्यों जपिया नाथ दिन रह नाई, हुन पाया गुर गोसाई, राव दूजा राम कली मेला पंजवा, करन करावन सोई, आन न दीसे कोई, ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना, गुरमुख मिलिया रंग माना, पौसोरे हर रस मीठा, गुरमुख किने विरले बीठा राव, निर्मल ज्योत अमृत हर नाम, पीवत अमर पहने काम, तन मन शीतल अग्न निवारी, अनद रूप प्रटे संसारी, क्या देवो जा सब किस तेरा, सद बलिहार जाऊं लक बेरा, तन मन जियो पिंड देसा जिया, गुर कृपा ते नीच निवाजिया, खोल तिवारा मेल बुलाया, जैसा सा तैसा दिखलाया, कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा, सेवक

तीर जाके बंधन काटे राय, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले पर्या, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

पीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकि चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पल कर पार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे पीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत में माता की केतक वर्ण।

आमी संत जनी परगास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलत मिथ्या विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल बिरधानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माने तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन्हीं बीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तें पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

कीर्तन आधार, निर्चल आसन बेसुमार, दुगना डोले कतहु जावे, गुर प्रसाद को इहु मेल पावे, प्रमते मोह न माया जाले, सुन समाद प्रभु के पाले, ताका अंत न पारावारे, आपे

कर कर थाके वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर पगतन को।

पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो या नाराच प्रत पारे नित सार समारे अंत की बार ऊट सिधारे नाम बिना सब चूठ परानी गोविंद पदन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ।

जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यों का ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का संग भया रहाओ, सगल पवित्र सर्व

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

ता छूटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा होई निर्मल जियो। सोदत सोदत सोद विचारा बिन हर

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान

परमेश्वर स्वामी काटकों प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई चोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई।

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय। राम कली मैला पन्नवा।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तरे।

हैं, माटी को जल बहस त्याग है, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

जय वर्त कपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सुर मना हर जन संग कीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कार।

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतो।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे तेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

जिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तक विचार, राम कली महला पहला। ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया। तन तन देखत

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

ज्योति सह सब सह मया आद पुर अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए कोरो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

शोध करे पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा के सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं कृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्द राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन मा

जी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करें, जे शरीर में हर हर नाम गुरु प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन पेश करे जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी, जिसनो मन वसाए, गुरमुख हो वह सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग विकम है जोगी।

कहे नानक मुक्त होवे जोगी। साथी रहे समाए राम करी मेला तीजा। भगत खजाना गुरुमुख जाता सत गुरु बूझ बुझाई। संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई। आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिव लाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई। परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन बैसे गुर शब्दी जोग पाई। तातुर बाजी शब्द निवारे नाम वसे मन आई। यो शरीर सर्वर है संतो स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई। त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही बिन नामे बिन सजाई। ब्रह्मा विष्णु

नानक एक कहे बेनंती, नावो गत पत पाए राम कली मैला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाए, संतो गुरुमुख पूरा पाए नामो पूज कराए, रहाओ हर दिन सब कुछ मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाए, हर साचे पावे सा पूजा होवे पाना मन वसाए, पूजा करे सब लोक संतो मन मुख थाए न पाए, शब्द मरे मन निर्मल।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्दी खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाण मन वसाई पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस

एक पेक करें सिरे अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन पगत करें दिन राती, राम नाम उर्धारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन पगत न हुई कभी, सह पाए पगत सवार।

तिन्हें पछाता जिसनों कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंग दिन जागत रहे दिन राती, अपने प्रिय प्रीत प्यारी, तन मन वारी वार कुमाई, अपने गुरु तो बलिहारी, माया मोह बिन

एक नाम वस्या कट अंतर पूरे की वड्याई रहाओ। आपे करता आपे पुगता देंदा रिजक सवाई, जो कुछ करना सो कर रहे और न करना जाई। आपे साजे

जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व थाई।

किन्ही मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्ही कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्ही पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कया मैं कुल्हे

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी तृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू रा

ऐसे राखनहार दयाल, जत तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्यो सुखानत अंत, तन बिगसै गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

चीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश, जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, जो चकवी सूरज की आस, जो चातक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम

की कृपाएं संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाए पूरे गुरपुरी मत दिनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाए।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रब अंत ना पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे कहे नानक मन मेरे सवारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सुख साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन पुखा शब्द।

धारो वाजे पंच सवक्त कर सवा गए शब्द वाजे कला दुत कर तारिया पंच दूत तुद वस्ती ते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जन कौ से नाम हर कह लागे कहो नाम कैस को हुआ तुत कर अनहद वाजे साची लिवे बिन देन मानी लिवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोई नाही कृपा कर बनवारिया केस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा तिल कटे जान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सत्य सवारिया कह नानक यूं आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनों होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फिरें दे जिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल।

अहंकार चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, समयों तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए तिन चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए तिन चले जिन्ना मार्ग पावे, कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा त्यावे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे, कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिरे।

कर्म कमाए। सहस जियो मलिन है कुछ संयम तोता जाए। मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए। कह नानक गुरु प्रसादी सह।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पानी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आप वखानी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिरलया माया बोलन कहे रवानी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा।

ज्ञान सब रतन है हीरा जित गराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यो लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ते सार न जानी तत्ते सार न जानी गुरु बाजो तत्ते सार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे।

जे अगन मैं आहार पहुंचावे, उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया। जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया, लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया, कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किसे विच्चों रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच्चों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए। हर आप अमूलक है पाग चुना के नानका जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मनवन जारा, हर रास मेरी मनवन जारा सतगुरु ते रास जाने। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना। कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अन रस राज रही तेरी प्यास न जाए। प्यास न जाए होरत कीते जिच्चे हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए। एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर सब जानी हर नाम।

जग में आए क्या क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वस्या पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक हो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया, ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में जो तरी, हर दिन अवर न देखो कोई, हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया। यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है, हर दिन अवर न कोई। कहे नानक नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाना आओ मैं पास जियो। हर पाना गुर पाया मेरा हर तब करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभु पान।

0: गुरु जाए हर प्रभु पास जियो।
1: सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुरु बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

सुगर सुजाना सद परदाना अमृत हर का नामा चाख अगाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तिने तिराया सगल तिसे का मानो कौ नानक थिर तखत निवासी सच तिसे

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभु त्याये सब किच पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभु मेरे कै।

है। उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो, पै दूर करता पाप हरता दुसें दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिये।

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमख मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते परगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

खाए। हर नाम नव निधग्रह परे, सिमर स्वामी अंतर जामे, कुल समूहा सब तरे। त्रय रंग जागे नै छिद्र लागे, किरपाल सद बख्शिंद जियो, बिनवंत नानक हर कंत पाया।

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। छंत रुत सर्द अडंबरो, असूकत के हर प्यास जियो, खोजंती

आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनते आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छपुनी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक संत

तिन बलिहारणे हर जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी।

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई।

आप अगोचर तंदै लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर, क्यों ना मिले काटे मन पीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुरविचार, अगम अगोचर।

सह सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई और क्या कही है किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुरु दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरण मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख

चार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दै दिस टूंड करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तुलावे तोले गुरमुख आवे जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजै देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड। तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूची जगत पुलाना।

दी हर पाई है मत को परम कुला है सोसा हो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस्सा वास रूड़ी बाणी हर पाया गुर सबदी विचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखार साओ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर सचियारी सच संचिया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल सा

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखी है।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने, सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औदू नानक, देहो सच्चा बिचारो आप।

एहो मन लाया कित बिद आसा मन साखाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते एहो मन लाया, मन सा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर।

गुरबचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुकम बिस्माद हुकम पछाने जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हों मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान।

गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहचान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शबद जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख साच नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हाँ हो मैं विच्चों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पहाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वसे सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल संगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधियारा, सुख दुख सम कर नाम

ततो तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन।

पार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद मिटे गुर शब्द विचार सतगुर पेटे मोख द्वार सत ना कीने मनमुख जल जाए दुर्मत विचर चोट

पर परे सच भाए, सो शब्द का कहां वास कथि अले, जित तरिय पव जल संसारो, त्रै सत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो, बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए, सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए, गुरमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई, नदर करे शब्द कट में वसे, विच्चों परम गवाए, तन मन निर्मल

ऊपर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन अवदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे अवदू हो मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुरु ते काल न ग्रास है रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न साध्या सच न अराध्या अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक आत्म राम।

पियो आत्म सुख तारी, सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, इहो मन मैगल कहां बसियले, कहां बसे इहो पवना, कहां बसे सो शब्द औदू, ताको चूके मन का पवना, नदर करे ता सत गुर मेले, ता निज करवासा इहो मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इहो मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे, नाभी पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हूं ना जावे, जा इहो हिरदा दे ना होती, तो मन कैठे रहता, ना भी कमल अस्तंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई, वरन पेख अस रूप न जापी, क्यों कर जापस साचा।

वर्ण पेख असरूप सो एको एको शब्द विदानी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिनस जाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरे दुख पाई गुरमुख हो वै सो ज्ञान तत् विचारे हो मैं शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नावे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

बिन गुरमुआ जन्महार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए।

भतीजा जो वीर पूर्वावनी की तुनी श्लोक महला तीजा। सतगुरु सहजा खेत है जिसनो लाए पाओ नाव बीजे नाव उगवे ना मेरे समाए हौ मैं एहो बीज है सहसा गया विलाए ना किच बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए अम्बे से ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी ना है जिस वे खाले सो वेख है जिस वस्या मन माहे महला तीजा मनमुख दुख का

सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावे, माया नो फिरे तपा सदावे, परमे फूला सब तीर्थ गहे, ओ तपा कैसे परम गत लहे, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे। महला तीजा, सो तपा जे ओ तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले, सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान, पौड़ी रात दिन सो

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरुमुख सदा हर पण सब देही सोजी पई सच्चा आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जिनके चित में परम तिस दै दित्ते नानका ते हो जेहा तरम अभय निरंजन परम पद ताका पूखा होए तिसका पूजन नानका विरला पाए कोई महला तीजा अभ्यागत ए नाखियन जे पर कर पूजन करे उदरे कारण अपने बहले पेख करेन अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सब अपना निज कर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत विछोड़ियन विच सच्चा आसराओ करदार सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुकम वर्तदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तकत सच्चा।

सच्चा सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता सिरे हुक्म ना बूझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जा।

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम पचाता। बाहर मूल ना खोजिए कर्माए विदाता। मन मुख हर मंदिर की।

पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलने गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसे अंधा होए सुजाए।

कोई जिसे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्म अंधा होए नानक हुक्म ना बुझे अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखेसा गुर सेवा ते जाने सच प्रतिये सा।

नानक चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल, मनुआ अंध न चेते पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है।

सब किछ कर ही माए है बड़ पागी लीता, अंदर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता, आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई। श्लोक मैला पहला, वेल पिंगाया कत गुणाया, कट कुट कर खुंभ चढ़ाया।

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सोत सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर फर्ज तम पल्ले। भगत सोन गुण गाउं दे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले। आप

चित करे नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए अब गुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस आए पौड़ी आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध।

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक तर के हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजोग।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जाने, जिस तू आवे चित बहुता तिस्ताने, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

पावे, अंदर मैल न उतरे हो मैं, फिर फिर आवे जावे, नींद व्याप्या काम संतापया, मुखो हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

आप तरे आप तंग सब तारे सब्बा सृष्ट छुड़ावे मैला पंजवा पंडित अखाए बहुती राही कोरड़ मोठ जिनेहा अंदर मोह

आपके वैद आप नारायण हैं। यह वैद जी का दुख लायण, गुर का शब्द अमृत रस खायण हैं। नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण। मेला पंजवा हुक्म।

सत्ता पौड़ी। जिस कै मस्त कर्म हुए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा। लगा रंग चरणार बिंद,

तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता श्लोक महला पंजवा छकड़े बाजार सोहन विच व्यापारिये वखर हिक अपा

खपती है, जोत पोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

तीर्थ बर्त नेम सुख संजमे रव सस गहने दियोरे सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस प्योरे निजर धार चुए अत निर्मले ए रस मनु आरा तोरे कहे कबीर।

मदन रश्चाच्या त्रिवन भया उजियारा रहाओ। दोयपुर जोर रसाई पाथी पियो महारस भारी। काम क्रोध दोय

आओ पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक अब तो मिटिया न जाए तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई दागे हुए सुरन में जूझे बिन दागे पग जाई साधु हुए सो भगत पछाने।

आगे जी मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम न बोले पांडे दोजक परे रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हथ कर्म कर उदर परे चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे तू ब्राह्मण मैं काशिक जुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन इक बिरवा उपजिया, करती जरहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मून दया कर चोली।

पीतर जन्म कवन फल पाया। पावन इद तरन तारन चिंता मन एक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु जीओ पिंड खा दिया तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर मन पर तन परती निंदा पर अपवाद न छूटे आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग न टूटे। जी कर कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे।

अंदर सोवे पटंबर तान सेज सुखाली बिगसै जियो सो सिमरन तू अंगन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाए जे सिमरन तुझको है नमाए सिमर सिमर हर हर मन गाये एहो सिमरन सतगुर ते पाये सदा सदा सिमर दिन रात

तरिया पसार रहाओ। हीरा देख हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख। दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीयत हौ रे पाई। निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाय रहाओ। नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार। नालियेर फल से बर पाका, मूर्ख मुग्ध गवार। हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई। कह कबीर कुल जा।

आकाश मदे परमियले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नाम बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले राव आनीले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये

राखी अले। वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजाओगो। बैरागी रामे गावोगो सब।

सूरज दोए सम कर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। तीर्थ देख ना जल में पैसो, जी जंत ना सतावोगो।

आया। खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवे परम तत्व है सतगुरु हुए लखाया। राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उंट तीर्थ मरे अगन दह काया। कल्प की जय अश्वमेध जग की जय सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

राम नाम सर कौ न पूजय। असदान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय। राम नाम सर कौ न पूजय। मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष। निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा।

तह बाजे शब्द अनाहद वाणी, तह चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, इस कला जो जाने पे हो, ए तै पास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतल थाती, जागत रहे सुख

कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास धरे राव हर हर नाम जपे आराधे सेवक पाए खरे किल बिखे दोख गए सब नीकर जो पानी मैल हरे किन किन नर नारायण गावे मुख बोले नर नर हरे पंच दोख असाध नगर में एक किन पल दूर करे वड पागी हर नाम के आवे हर के पगत हरे इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे।

वचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखे सस कमले उनवे कन कन कन हर गर्जे मन बिरसे मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दियायो हम सतगुर चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

जन नानक कहो दया प्रभु धारो, हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभु धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुरु सुने, किल बिख पाप नाम हर काटे, जीव खेत किसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम कैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, जो जल कुंचर तदुए बांधियो, हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुग ने, तुमरी खा पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभु वड ने। नट महला चौथा, मेरे मन कल कीरत हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभु धारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी, सब त्यावे हर रुण।

ले नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन अकथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीरत कल युग विच उत्तम मत।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नत नारायण मेला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिटी सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विष्णु पे नानक जस दावत ठाकुर गुणी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आठ पैर जन के संग बस्यो मन ते नहीं विसारियो रहाओ बरन चेन नहीं किछ पेख्यो दास का कुल ना विचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारियो महा विखम अग्नि का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

पूरन पूर्व है कृपा निध कट कट दुष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दो कर जोड़ ना।

मेरे ठाकुर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आ गए मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभु को प्रभु एको पुरख निरारे सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर प्रभु एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे गुरमत राम नाम तन

सुत वजी है दैदुस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुण

बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्थारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जम

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नखीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिब चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गनक उधारे, परस न परस।

तब लग किचना समारे, जब कर मंदर आग लगानी, कड कूप कदै पनिहारे। साकत सो मन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम विसारे, साकत बचन बिछुआ जो डसिए, तब साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाए, लग साधु संग सवारे, गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूरब जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे, गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लाल में लाल गुलारे, जैसा रंग दिल सो होवे।

के मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे हर हर सेवक सेवा लागे सब देखे ब्रह्म पसारे एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारे अंतर वास बहुत मुस्काए ब्रह्म फूला मृग सिंहारे बन बन टूट।

कहे सेवक जन माने प्रतक गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे जो जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यों पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा।

सत्संगत परम पद पाया पदमाखुन के गटकारे नित नित काया मज्जन किया नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए सब फोकट चार सिंगारे मटक मटक चल सकी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई मैं सतगुरु अलख लखारे।

शब्द विचारे निज पर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे। तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नाम के कृपा करो गुर मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणांगति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब के निमित पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहा हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्तके तुरली किया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दर्गन बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जलें गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौड़ा महला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास कया गुरु पाया, हर जप्यो परम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पय शांति आई, हर उर्धारियो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूड़ी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे

हवर टहला चूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होवना सो होया को न मिटनहार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम अपार।

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं

साध संगत पज पूरन काम रहाओ बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत।

खाए बिलास जैसो आंडो हृदय माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊंच मूचो बहु अपार सिमरत नानक।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिकसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हो बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड ले हो पौजल बिखम ते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वचल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक।

बाप मादो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई।

अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसारे। प्रणवे नामा।

नानक शरण तुहारिया, देखो सदा हजूर शब्द पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है। खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई। मूरख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमे पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रह न कोई किछ खा जाय किछ तर जाये जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

पानी कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यो ज्यो किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

जाने तू दाना साहिब सिर मेरा खिजमत करी जन बंदा तेरा पंत नानक अंदेसा एही बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही मारू मैला पहला मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाउ सुभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म ना करना।

हवर पला संसार मारू महला पहला एहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार है रहाओ ना एहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना एहो तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए इस तन की देखो वड्याई सहजे माते अंदिन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई इस तन बिन कहो किने परम गत पाई पंत नानक अकथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता एहो तन पाए मारू मैला पहला सूर सर सोस ले सोम सर पोख ले जुगत कर मरत सो संबंध की जय मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस ने कंद चीजे मूड़े काय चे परम पुला ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ अजर गहो जार ले अमर गहो मार ले प्रात तज छोड़ तो अप्यो पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस ने कंद चीजे पंत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े ने हंस ने कंद चीजे मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के साचा वखर जित मानक मन में मन मार सी सच ना लागे कत राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत बाबा साचा साहेब दूर ना देख सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि शंकर इंद तपे पेखारी माने हुक्म सोहे दर साचे आकी मरे अफारी जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनिया तन निगुरिया गुर निमानिया तू मान अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ न मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुटी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्माइल, ताके मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती, एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति, जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची, एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती, दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती, शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी, गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी। राग मारू मैला पहला कर पंजवा।

जियो जिसनु साचा सिखती लाए गुरमुख विरले किसे बुझाए अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का व्यापारी जियो रहाओ फिर सेती तन प्रेम रचाए गुर के शब्द तथा चित लाए सहज सेती तन खरी सुहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए गुर के शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हों मैं जलिया मनो विसारे।

जम पुरबदे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभु वे प्रभाव है ना तिस तिल ना तमाए, नानक तिस शरणाई पज।

सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम कीर्तारथ गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदे तू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम करे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआ रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नरहरे। नाम जपत उग्रसेन गत।

तोड़ बंधन मुक्त करे, जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे, सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे, जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा, सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई, साधक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया, मुख इंद्रादिक रविया।

गुरमुख पार पया रहाओ, सुर नर गण गंधर्वे जप्यो, रिख बपुरे हर गाया, शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो, मुख हर हर नाम जप्या, हर हर नाम जिना मन पीना, ते गुरमुख पार पया, कोट कोट ते तीस त्यायो, हर जपत्या अंत न पाया, वेद पुराण सिमरत हर जप्या, मुख पंडत हर गाया, नाम रसाल जिना मन वस्या, ते गुरमुख पार पया, अनत तरंगी नाम जिन जपया, मैं गणत ना कर सकया, गोविंद कृपा करे थाए पाए, जो हर प्रभ मन पाया, गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो, जन नानक नाम लया।

कर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा। हर भाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख, मिल संगत सरदा उपजे गुरसबदी हर रस चाख। सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख, मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख। गुरपुरे हर पाया हलत पलत पत राख, रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख। तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख, अमृत हर हर नाम है गुरपुरे हर रस चाख। मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस बहुलाख, बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवें अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किलविक काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ। निर्भव निरंकार सतनाम, जग में श्रेष्ठ उत्तम काम। दुश्मन दूत जम काल ठे मारो, हर सेवक नेर न जाई जियो। जिस ऊपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया। जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो। सब में एक निरंजन करता, सब कर कर वेखे अपने चलता। जिस हर राखे तिस कौन मारे, जिस करता आप छड़ाई जियो। हौ अंदिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छड़ाई जियो। मारू मैला पंजवा, कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद, डर पे तरत आकाश नखत्रा।

सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ। दे तार अर देवा डर पै, सिद्ध साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन में, फिर जोनी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूप उपाया। छल बपुरी ए कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगल समग्री डरे व्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सो है दरबारा। मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभ समरथ मांगन को दान आए त्यागो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन ऊपर छोयो मुखते सुन कर

ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरे हो, सहज आनंद रखियो गए पीतर उठ उआ हूँ कौ दौरे हो। आज्ञा में पूक सोई कर सूखा, सो घरख नहीं जाने हो, जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले माने हो। पयो किरपाल ठाकुर सेवक का, सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल उहु आया। जिन नानक खसम पछाता मारू मैला पंजवा, खुलिया कर्म किरपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई। श्रम था का पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई, अब मोहे जीवन पदवी पाई। चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई राव, काम क्रोध लोभ मोह निवारे निवरे सगल बैराई। सद हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई, सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई। पावन पतत किए खिन पीतर महिमा कथन न जाई, निरपो पय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सुलिवलाई, मारू मैला पंजवा। जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको हुआ को फिर तावसरे। अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

तारियो प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक तत विचारियो मारू मैला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत हर गुण गावे नीता नीत तिस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जा कै वस।

प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें एआनथ तज सारंग तर परम तू पूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ। रहाओ तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर्मान्या जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी ऐसे फूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वै सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दव तुम नहीं सुनियो तर्म राय। रहाओ विकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंगना पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए त्याए हर जियो होए।

किया था। अनुपौ अचरज रूप प्रपेख्या मेरा मन छोड़ न कतहु जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वज्यो तें अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मन तृष्णा बूझी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुरु।

ताऊ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट ना कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ ना कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए, मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो पर।

सच बैठता सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो, नानक कर पाया मारू मैला पंजवा। वेद पुकारे मुख ते पंडित का मामन का माठा, मोनी होए बैठा एकांति हृदय कल्पन गाठा। होए उदासी गृह तज चलियो, छुटके नाही नाठा। जी की कहते हैं बात कहाँ, आप मुक्त मोको प्रभु।

रूप रंग खुशियां मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूरे रंग राते जिन गुरु मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम के।

किया दिनस सब राति वन त्रिन त्रिभुवन पानी चार वेद चारे खानी खंड दीप सब लोआ एक कवावै ते सब होआ करने हारा बूजो रे सतगुरु मिले ता सूजे रे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हो मैं आवे जाई मन टिकन न पावे राई।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

और बोयलिया जीजन सगले पत्तलिया रहाओ एक कै श्रम कर गाडी गढ़ है एक कै सुखने दाम न छड़ है राज कमाए करी जिन थैली ता कै संग न

नानक ता कै बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्त सत पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत इकेला जात इकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक कीर्त ना जा।

आई प्रभु विसरत नरक में पाया तें मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभु सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप से कांडनहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया मां अगन ते आत उबारिया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह कावो।

का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई अपने को कृपा करियो इस नाम से आई नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर।

अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है, है होसी आहे दया मोह की जय देवा। नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा, पतत उदाहरण तारन बल बल बले बल जाय। ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय। मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा, यहाँ ओट आधारा।

अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जाको नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

समाज सुभाए हर पंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू मेला पंजवा कर छेवा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियानपा मिल साध त्याग गुमान अवर सब किछ मिथ्या रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम।

तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ। दुख दीन ना पाओ व्यापै मिले सुख विश्राम, गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तत् ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से, पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे, जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे दिन सत पवन चूलत में, हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत, मरे ना आवे ना जाए बिन सह व्यापत उसन न सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत, चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद, नवल नव तन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू मैला पंजवा, चलत बैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार, चरण शरण पद संग साधु भव सागर उतरे पार। मेरे मन नाम हृदय तार, कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू आपन आप निवार। गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे, नानक कभू न हार। मारू मैला पंजवा, तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो, तिसें प्राप्त नाम के।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न

सोड सजले तेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ।

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खसम छड़ाए लया। विच्चों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चितलाया, आवे जाए पुवाये जोनी, रहन न कितनी थाए बया। मेरवा रख लयन आपे, जी जंत सब तिसके थापे, जन्म पदार्थ जिन चलिया, नानक आया सो परवान थिया।

तुमरो प्रदान है। कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थान है। आवे ना जावे संगे समावे पूरन जाता काम है। भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण।

हर को नाम सदा सुखदाई, जा को सिमर अजामल उद्रियो गनताहू गत पाई रहाओ। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरो करुणा में अपनी पैग बढ़ाई। जे नर जस कृपा निदगायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फांस जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नामा माई में मन को मान न त्यागो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहा होत अब कह पछताए छूटत ना इन भाग्यो एक चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस में पाग्यो मारू अच्छा मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुरु प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सची रख बहु कहा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमति नाम उधारा गुरपुरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमति जद मथी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना औ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

दूजे पाए कार कमावनी नित तोता से सारा साची संगत थान सचे सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सचे सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा मानस दात न हो वही तू दाता सारा अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा नानक मेल न चूकई साचे वापारा मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार सिखे पवन ना पाव को ना जल ना आकार सिखे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए सप पिड़ाई पाए दिख अंतर मन रोस पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख मागर मच पाए कुंडी जाल बताए गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए जमन मरण न सुजई कीर्तना में क्या जाए हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए जरा जोय ना सकई सच रहे लिवलाए जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार गुर राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार गुर मिले खसम पछाणी है कहु नानक मोख द्वार मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तह जाओ जिस तह डर तह पागी है अमृत ता को नाओ मारे राखे एक को बीजो ना ही खाओ बाबा मैं कुचील काचो मत हीन नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार आगे पाछे सो

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतुर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू धूप, गीत साध चा

नानक नाम ना विसरे, जो तुस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, इहो मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम दिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वडे आई है। पाने बक्से पूरा तनी सत्कार कमाई है, विछुड़िया को मेल ले गुर को बल जाई है। लाले गोले मत खरी गुर की मतनी की, साची सुरख सुहावनी मनमुख मत पी की। मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरथ तुर की, साचे बैसन उठना सच भोजन पाख्या। चित सच्चे वित्तो सच्चा साचा रस चाख्या, साचे कर साचे रखे गुर वचन सुवाख्या। मन मुख को आलस करो साचे उजाड़ी, साथा चुगे नित चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी। गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निज तारी, अनहत लाला बेदिया प्रभ हेत प्यारी। बिन साचे जियो जल बलों झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरकारी। जिन्नी नाम विसारिया तिन्ना ठोर न ठाओ, लाले लालच त्यागिया पाया हर नाओ। तू बख्शे ता मेल ले नानक बल जाओ, मारू मैला पहला। लाले गारव छोड़िया गुर के पैसे तुभाई, लाले खत्म पछाणिया वड्डी वड्याई। खत्म मिले सुख पाया कीमत कह न जाए, लाला गोला खत्म का खत्म वड्याई। गुर प्रसादी उबरे हर की शरणाई रहाओ। लाले नो सिरकार है उर खत्म फुरमाई, लाले हुकम पछाणिया सदा रह रजाई। आपे मीरा बक्सले वड्डी वड्याई, आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई। तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाई, बिन सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई। सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चले फलाया, जियो पिंड सब तिसदा साओ तिने विक पाया। जा कृपा करे ता सेवी है सेव सच समाया, लाला सो जीवत मरे मर विच्चों आप गवाए। बंधन टूटे मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए, सब में नाम निदान है गुरमुख को पाए। लाले विच गुण किस नहीं लाला अवगणियार, तुझ जेवर दाता को नहीं तू बख्शनहार। तेरा हुक्म लाला मन्ने ए करनी सार, गुर सागर अमृत सर जो इच्छे सो फल पाए। नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए, गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए। सोइना रूपा सब तात है माटी रल जाई, बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई। नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई, मारू मैला पहला। हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीरे, तेहो मन अवगुण बांधिया सो दे शरीर। पूरे गुर बख्शाई है सब गुने फकीर है, क्यों रही है उठ चलना बुद्ध शब्द बिचारा। जिस तू मेले सो मिले तुर हुक्मा पारा रहाओ। जो तू राखे त्यों रहा जो दे सो खाओ, जो तू चलावे त्यों चला मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड्याईया मेले मन चाओ, कीता क्या साला ये कर देखे सोई। जिनकी आसो मन वसे मैं अवर न कोई, सो साचा साला ये साची पत होई।
पंडित पढ़ न पहुँचे बहु आल जंजाला पाप पुन दे संग में खुद आ जा।

मेरे प्रभु पावन से उजले सब मैल परी जय मैला उजर तांतिये पारस संग पी जय वन्नी साचे लाल की किन कीमत की जय पेठी हाथ न लबई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद परंतया मूठी गिन माने नानक कीमत तो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे अवरा के कर हेरे गृह धर्म गवाए सत गुरु ना पेटे दुर्मत कूमन के रे दिसंतर पवे पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरे काकी पिंडी शब्द नाची ने उधर परे जैसे टोरे बाबा ऐसी रवत रवे सन्यासी गुर के शब्द एक लिव लागी तेरे नाम रते तृप्तासी राव कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेट पे खारी कापड़ तार बनाई खिंसा चोली माया तारी कर कर मांगे जग प्रबोधे मन अंधे पतहारी परम पुलाना शब्द नाचीने जुए बाजी हारी अंतर अग्न ना गुर बिन बूझे बाहर कुवर तापे गुर सेवा बिन भगत ना होवी क्यों कर चीनस आपे निंदा कर कर नरक निवासी अंतर आत्म जापे अथक तीरथ परम विगूचे क्यों मल तो कह पापे छानी खाक विपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने सात कहे ते छो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है नाम न जपे क्यों सुख पावे बिन नावे क्यों सो है मूंड मुंडाए जटा सिख बांधी मोन रहे अभिमाना मनुआ डोले जय दिस्तावे बिन रत आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महा बिख पी रे माया का देवाना कीर्तना मिटे हुक्म न बूझे पशुआ माए समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्याप्या चितलाया पर नारी सिख करे कर शब्द न चीने लंपट है बाजारी अंतर दिख बाहर निबराती ता जम करे खुआरी सो सन्यासी जो सतगुर सेवे विच्चों आप गवाए साधन पोजन की आस न करे अचिंत मिले सो पाए बके ना बोले खिमा तन संग्रे तामस नाम जलाए तन गिर ही सन्यासी जोगी जे हर चरणी चितलाए आप निराश रहे सन्यासी एक क्यों लिवलाए हर रस्ती वे ता सांत आवे निज कर ताड़ी लाए मनवा ना डोले गुरमुख बूझे तावत वर्ज रहाए गृह शरीर गुरमती खोजे नाम पदार्थ पाए ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ नाम रते विचारी खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी सच नाम उर्धारी नाम बिना नहीं छूटत नानक साची तरकू तारी मारू मैला पहला मात पिता संयोग उपाए रकत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द निव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पव जल क्यों तरे गुरुमुख नाम निरंजन पाले अफरियो पार अपार तरे रहाओ ते गुण विसर गए अपराधी मैं बौरा क्या करो हरे तू दाता दयाल सदै सिर एनिस दास समार करे चार पदार्थ ले जग जन्मिया शिव शक्ति कर वास करे लागी पूख माया मग जो है मुक्त पदार्थ मोहे खरे तरन पलाव करे नहीं पावे किस उत टूंडत थाक परे काम क्रोध अंकार व्यापे कूण कुटुंब स्यों प्रीत करे खावे पोगे सुन सुन देखे पहर दिखावे काल करे बिन गुर शब्द ना आप पछाने बिन हर नाम ना काल करे जे कामो हो मैं कर पूले
मेरी मेरी करते छीन खड़े तन तन बिन सह सह सह सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद पया जोबन तन चुकिया कफ कंठ बिरू दो नैनो नीर तरे चरण रहे कर कंपन लागे साकत राम ना हृदय हरे सुरत गई काली हूँ तोले किसे न पावे रखियो करे विसरत नाम ऐसे दुख लागे जम मार समारे नरक खरे पूरब जन्म को लेख न मिटे जन्म मरे का को दोष तरे दिन गुरबाद जीवन होर मरना दिन गुर शब्द जन्म जरे खुशी खुआर पै रस भोगण फोकट कर्म विकार करे नाम विसार लोभ मूल खोयो फिर धर्म राय का दंड परे गुरमुख राम नाम गुण गावे जां को हर प्रभ नदर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरो गुर बचन समारो संगत हर जन पाव करे हर जन गुर प्रदान द्वारे नानक तिन जन की रेण हरे।

मैं गल अवगुण मुठड़ी बिन फिर चूर मराओ तेयड़े फिर समला सौरड़े करवास सुख संबंध सुहागनी फिर पाया गुण पास लेप निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए फिर मुत्ती दोहागनी तिन दुखी रहन विहाए।

तो सौ रंग रवंत सबे रुचि चंगिया जित सके सुने हो सात अनकंत पछाणिया सुख सुची लिस देहो पत्तन पूके पातनी वंजो तुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ में सतगुर बोहित चाड़ हिकनी लद्या हिक लद गए हिक पारे पर नाल जिन्नी सच वणंजिया से सच्चे प्रवनाल ना हम चंगे आखिए बुरा न दिसै कोए नानक हो।

है एक जोत दो नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाए बिन सतगुर पल्ले ना पाए, सतगुर कह पाने मन वस

संजोगी तन फिर मेला होवे, गुरमत विचों दुरमत होवे, रंग सो नित रलियां माने अपने कंत प्यारी जियो।

कार्तीजा अष्टपदियां इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। लख चौरासी परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो राव। रतन जवे हर बंजन आयो कालर लाद चलायो, जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर कीतना आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो, जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो, पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी इस ही मैं उर्जायो, जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो। मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रस।

काम क्रोध लोभ त्यागना, मांगना मांगननी का हर जस गुरते मांगना, जागना जागननी का हर कीर्तन में जागना, लागना लागननी का गुरचरणी मन लागना, ए विद तिसे प्राप्ते जाके मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनाम ना रहाओ, तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना, संत कृपा ते हृदय वासे दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासे दुर्मत दुख सजावना, दर्शन पेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ न पावना, नौ निद सिद्ध पाई जो तुमरे मन पावना, संत बिना मैं थाओ न कोई हवर न सूजे जावना, मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्य हर हर रामना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावे नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख ना लागे संतोख सदा तृप्त जीवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिर नांगे नहीं जीवना, पोगना मन मदे हर रस संत संगत में लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर पगती संग सीवना, मात्या हर रस में राते तिस बहुड़ न कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्व निधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता, दोहु व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पालिए, ग्रह राज में नरक उदास करो।

ओ बालक वांगी पालिए छोड़ बह तो छूटे नाही जो संचय तो पौ मन माही इस ही में जिसकी पत राखे तिस साधु चोर टालिए जो सूरा तिस ही होई मरना जो पागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया संग न कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड वजे सा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया खुश खुश लेंदा वक्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे

खाल कथाव पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल क

संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक को, गुण गीता नित वखाणिया। मारू सोलहे महला पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद। साचा सच सोई अवर न कोई, जिन सिर जी तिन ही फुन गोई, ज्यों पावे त्यों राखो रहना, तुम स्यों क्या मुकराई है, आप उपाए आप खपाए, आपे सिर सिर तंदे लाए, आपे विचारी गुणकारी, आपे मार्ग लाई है, आपे दाना आपे बीना, आपे आप उपाय पतीना, आपे पौन पानी बैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके, साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी तरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेले खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

परवाह सदा तू ना तिल ना तमाई है। काल विकाल पै देवाने शब्द सहज रस अंतर माने आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना जोदी सह तुझ माए समाना नानक नीच पिछिया दर जाते है मैं दीजै नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला आपे तरती तौल आकाशं आपे साचे गुण प्रगासं जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मेटे साचे लेख है आपे करे कराए आपे आपे दे वड्याई है। पंच चोर चंचल चित चाले पर कर जो है कर नहीं पाले काया नगर टह टह तेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे मनसा मार मने स्यों लूजे जो तुद सेवे से तुद ही जे निरपव बाल सखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला आपे ज्योत स्वरूपी बाला जटा विकट विकराल स्वरूपी रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता ना तिस मात पिता।

कोई न काटे अवगुण मेरे, सुर नर नाथ साहिब सब ना सिर, पाए मिले पहु जाए है, फूले चूके मार्ग पावे, आप पुलाए तू है समझावे, बिन नावे मैं अवर न दिसे, नामो गत मित पाई है, गंगा जमुना केल के दारा, काशी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, अठसठ अंक समाई है, आपे सिद्ध साधिक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अगली प्रभ आपे, परम पेद पौ जाई है, आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुल ना कबहू पुल्ला, आपे मेहर दया पत दाता, ना किसे को बैराई है, जिस बख्शे तिस देव डियाई, सबसे दाता तिल ना तमाई, परपुर तार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है, क्या काला ही अगम अपार है, साचे सिरजनहार मुरार है, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिले मेल आई है, ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साच सच्चे गुण गावा मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कहे बेनंती दर देखूं लिवलाई है मारू महला पहला। दूजी दुर्मत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने छोहर दिन फिर नींद न पाई है। अंतर अगन जले पड़कारे मन मुख तक के कुंडाचारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अंकार निवारे सत्सर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे मन सामन है समाई है। माँ की रकत पिता बिंद तारा मूरत सूरत कर अपारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना गुर ते समझ पड़ी क्या।

तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना पर थाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है, आप उपाया जगत सवाया, जिन सिरिया तिन संदै लाया, सच्चे ऊपर

नानक नाम रते बैरागी। निज कर ताड़ी लाई है मारू महला पहला, आद जुगादी अपर अपारे, आद निरंजन खत्म हमारे साचे।

सच नाम सच्ची वड्याई सच है तख्त वड़ाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मनमुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मनमुख पचै अवाई है। मनमुख कदे न दरगह सीजे बिन शब्द क्यों अंतर रीजे बांदे आवे बांदे जावे सो जी बूझ न काई है। दया दुआ पर अद्दी होई गुरमुख विरला चीने कोई दोए पग धर्म तरे तरणी तर गुरमुख साच तिथाई।

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते विचारी, ठाकुर स्यों बन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावे, जो तुद पावे तिवे चलावे, हठ निग्रह अपतीज ना पीजे, बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है। सतगुर वे परवाव सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अबनासी, ना तिस काल संताई है। गुर में आप रखिया करतारे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व दिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है। सगले जाचे गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाचे, मैं दीजे साच रजाई है। मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमे

मूल न बूझै साच नारी जै दूजै परम पुलाई है। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लिव गुरमत जाती। मनमुख सोए रहे से लूटे गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे कूड़े राती कूड़ कमावे। शब्द मिले से दरगै पैदे गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी। नाम बिना किस साधना लागे हर बित्रे दुख पाई है। भोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मोए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है। बिन बाद विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर्ष्यों बंत बनाई है। प्रभ की गत मित कोई न पावे, देखो वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्हें उपाई है। वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किस करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कमाए है। एक तीरथ नावे अन न खावे, एक अगन जलावे देह खपावे। राम नाम बिन मुक्त न होई, किन विद पार लंगाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई। पच पच बूढ़े कूर कमावे, कूर काल बैराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज कमावे। नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू मैला पहला, आपे करता पुरख विदाता। जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक। आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे। बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा। गुर संगत यह बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे। हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करे पर हर दुख दालद। जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे। संगत कुल तारे साच परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल। ओए रहे भगत लिवलाई है, बूझो हर जन सतगुर बाणी। यह जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी। हर जप जप हृदय त्याई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा। कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं। दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पराई। पर पर दज्जे सांत नाई, मिल सत्संगत नाम सलाहो। आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरियाई। हों मैं तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो। क्यों तरिये पव जल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिख केला। तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर देले।

ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है ना ही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मे आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तख्त सो सब

संगत मुक्त सो पार उतारे। नानक तिस का लाला गोला जिन गुरमुख हर लिवलाई है। मारू मैला पहला केते जुग वरते गुबारे। तारी लाई अपर अपारे तुंदू कार निरालम बैठा। ना तद तंद पसारा है जुग छत्ती तिने वरताए। ज्यो तिस पाणा तिवे चलाए तिसे सरीत न दिसे कोई। आपे अपर अपारा है गुप्ते बूजो जुग चतवारे। कट कट वरते उदर मजारे जुग जुग एका एकी वरते। कोई बूजे गुर विचारा है बिंद रक्त मिल पिंड सरिया। कौन पानी अग्नि मिल गिया आपे चोज करे रंग महली। होर माया मोह पसारा है गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी। आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले। अंतर उदर मजारा है चार पदार्थ ले जग आया शिव शक्ति करवा।

काली हूफुन तौले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंधला बिनस बिनासे, मूठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन सीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगति बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी ही मंदा आँख न चले, सच खरा सच आरा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द कह जय पत होई, आपे बख्श ले तिस पावे, हों मैं गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुकम पछाने, जुगे जुगंतर की विद जाने, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारण हारा है, मारू मैला पहला, हर सा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सो अंतर दाना बीना है, गुर सर्वर हम हंस प्यारे, सागर में रतन लाल बहु सारे, मोती मानक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाओ अगाध निराला, हर अंत न पाये गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तारण हारा, मेल ले रंग लीना है, सतगुर बाजो मुक्त किनेही, ओ आद जुगादी राम स्नेही, दरगे मुक्त करे कर कृपा, बक्से अवगुण की नाहे, सतगुर दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे पौन पानी बैसंतर गाजे मनुआ डोले दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की ना है नाम विसार दोख दुख सही है हुकुम पया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे जो जलते बाहर मीना है चौरासी नरक साकत पोगाये जैसा की तै तैसो पाये सतगुर बाजो मुक्त न होई केत बांदा ग्रफ दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा ली जय तिल जो पीड़ी मात पिता कलत्र सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त न कीना है मीत सके केते जग माही बिन गुर परमेश्वर कोई नाही गुर की सेवा

हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की नाहे, प्रभ बेअंत गुरमत को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े चित चंचल चलन न दीना है। सतगुर मिलो तीनों बिद साई जित प्रभ पावो गणत न काई। हौ मैं मार

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

कनेरे नरक पचे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजै दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर

यम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत् विचारा है। कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पड़ पड़ पाही। अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है। सतगुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए। कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है। खेहू खेर ले तन छीजे मन मुख पाखर फैल न पीजे। करण पलाव करे बहुतेरे नरक सुर्ग अवतारा।

कूकर कूकर कहिए कूड़ियारा, पौ के मरे पौ पौ पौ हारा, मन तन चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मिलन हारा है। मारू मैला पैला कर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आगे, राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत्व विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा, ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में ए रस टोलो, गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, सत विचारो हर लिवलावो, अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना, जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन ले चीनी, आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई, आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत क्यों निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, हैनत निंदा करें अनेका, बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके, बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परिया, बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिये पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते पूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो, साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए, किसको

आशा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी कर्क चाले चाले, बिखला दे चार बिकारा है, हर की भगत करो जन पाई, अकथ कथो मन मने समाई, उठ चलता ठाक रखो कर अपने, दुख काटे काटन हारा है, हर गुरु पूरे की ओट पराती, गुरुमुख हर लिव गुरुमुख जाती।

तुम्हारी तू समरथ दयाल मुरारी तेरे चोज न जाने कोई तू पूरा पुरख विधाता है तू आद जुगाद करे प्रतपाला कट कट रूप अनूप दयाला ज्यो तुद पावे तिवें चलावे हैं सब तेरो किया कमाता है अंतर ज्योत पली जग जीवन सब कट पो गए हर रस पीवन आपे ले वे आपे दे वे तिहो लोई जगत पित दाता है जगत उपाय खेल रचाया पवने पानी अग्नि जियो पाया देही नगरी नौ दरवाजे सो दसवा गुप्त रहाता है चार नदी अग्नि असराला कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला सातत दुर्मत डूबे दाजे गुर राखे हर लिवराता है अब तेज वाये पृथ्वी आकाशा दिन में पंच तत् करवासा सतगुर शब्द रहे रंग राता तज माया हो मैं प्राता है इव मन पी जय शब्द पति जय बिन नावे क्या टेक टिकी जय अंतर चोर मुहे कर मंदर इन साकत दूत ना जाता है दुंदर दूत पूत पिहाले किंचो तान करें बेताले।

जुग चारे जम कंकर काल पर आता है जम दर बांधे मिले सजाई तिस अपराधी गत नहीं काई करण पलाव करे बिललावे ज्यो कुंडी मीन पर आता है साकत फांसी पड़े अकेला जम वस्किया अंध दुहेला राम नाम बिन मुक्त न सूजे आज काल पच जाता है सतगुरु बाजना बेली कोई एथे उथे राखा प्रभ सोई राम नाम देवे कर कृपा क्यों सलले सलल मिलाता है फूले सिख गुरु समझाए उजड़ जांदे मार्ग पाए जिस गुरु सेव सदा दिन राती दुख पंजन संग सखाता है गुर की पगत करे क्या प्राणी ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी सतगुर अलख कहो क्यों लखिए जिस बख्शे तिसे पछाता है अंतर प्रेम परापत दर्शन गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन्न एनत निर्मल ज्योत सबाई काट दीपक गुरमुख जाता।

तिन कट कट अंतर ब्रह्म पहचाना। नानक हर जस हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है। मारू महला पहला साचे साहिब सृजन हारे, जिन कर चतर तरे विचारे, आपे करता कर

खच परास है, जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरुमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ति बाणी, सुन कही है को अंत न जाने, जा को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए, जो जन्मे ते सर पर मरना, कृत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते पे निराले, गुरुमुख सील सनाहा है। नीचे साचे के व्यापारी, सच सौदा ले गुर विचारी, सच्चा वखर जिस तन पल्ले, शब्द सच्चे ओ माहा है। काची सौदी तोता आवे, गुरुमुख वणज करे प्रभ पावे, पूंजी साबत रात सलामत, यूका जम का फाहा है। सबको बोले आपन पाने, मनमुख दूजे बोल न जाने, अंधले की मत अंधली बोली, आए गया दुख ताहा है। दुख में जन्मे दुख में मरना, दुख न मिटे बिन गुर की सरना, दुखी उपजे दुखी दिन से, क्या ले आया क्या ले जाहा है। सच्ची करनी गुर की सिरकारा, आवन जान नहीं जम तारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहा है। हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा, और न दूजा कहा है। ओढ़ न कथने सिफ सजा।

का कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे रे प्रवाह अखुट पंडारे तू दयाल कृपाल सदा प्रभ आपे मेल मिलाएंदा आपे देख दिखावे आपे आपे थाप उठापे आपे आपे जोर विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती तुद अंदर देखें आप बैठ बिजमंदर नानक साच कर।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाए, पाणे सहलवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मनमुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सबाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फेर उसारे, रूप न रेखिया मृत नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ जिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सच्यारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभुवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किने न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, गुरों विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्मे मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस देवडे आई, मेल न पच्छो ताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे त्रिप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर, ममता मोह चुकाएंदा, दाना कैसिर दान विचारा, करण कारण समरथ अपारा।

नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा मारू मैला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा तरन ना गगना हुक्म अपारा ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी ओ पत खपत ना आवन जानी खंड पताल सपत नहीं सागर नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला दोजक पेस नहीं।

पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संयम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विगसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संयम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान प्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वरन पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव ना देहोरा।

एक मसाए कहा जी रईवत राव न हो मैं दुनिया ना तो कहन कहाएंदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएंदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएंदा जा तिस पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए माया मोह वधाएंदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। कौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है। दसवें वासा अलख अपार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखे वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे शोभा पाएंदा। गढ़ में हाट पटन वापा।

रे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जमदार न मारे फेटे, ज्यो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा।

पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाए दा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया। हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाए दा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग। हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाए दा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन वासी। हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाए दा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणित अपारा। माने हुक्म सो दरगह पैजे, साथ मिलाए समाए दा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे। आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराए दा। काया कोट करे मैं राजा, नेब खवास पला दरवाजा। मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताए दा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी। नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएंदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी। आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे। सुनो सुन उपाएंदा, कौन पानी सुने के साजे। श्रेष्ठ उपाय काया गणराजे, अग्न पानी जियो ज्योत कुमारी। सुनने कला रहाएंदा, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय। सुनने वर्ते जुब सवाए, किस पद विचारे सो जन पूरा। किस मिलिए परम चुकाएंदा, सुनो सपत सरोवर थापे। जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे। फिर बहुड़ जोन न पाएंदा, सुनो चंद सूरज गहनारे। किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम। सुनने ताड़ी लाएंदा, सुनो तरत आकाश उपाए। बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया। आप उपाय खपाएंदा, सुनो खाणी सुनो बाणी। सुनो उपजी सुन समाणी, कुछ कुछ चलत किया सुर करते। विस्माद शब्द देखाएंदा, सुनो रात दिन सुदोय किए। ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता। गुरमुख निज कर पाएंदा, सामवेद ऋग जुजर असर बन। ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकी कीमत कह न सके को। त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा, सुनो सप्त पताल उपाय। सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर। सब तेरो किया कमाएंदा, राज तम सत कल तेरी छाया। जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनों कृपा करे हर गुरमुख। गुण चौथे मुक्त कराएंदा।

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएदा, पंच तत् सुनो परिघाषा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीके, पाप पुन भी जाएदा, उत्तम सतगुर पुरुष निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

जिया अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सत संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया। त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक द्रासा। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत।

पाया, पंच तत् मिल ए सनसिया, आत्म राम पाए सुखतिया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना तिस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गर महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाये गुरमत पायक, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, क्यों सात वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एक अंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसे

सच्चे मेल निवास निरंतर आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाहद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पो पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोज सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुर पुरख है पुरख मिलाया, प्रवदाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सत्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम से क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, अवर न दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कथे देखे अपरंपर, सुन गर्व न जो नी जाया, सच बिन सत संतोख न पावे।

बिन गुरु राम नाम क्यों त्याय है, गुरमत लेहो तरो पग जुतर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाई है, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साए काटे हर जप अकल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, हृद अंतर अलख लखाया। गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तत निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया। जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगण हारा, रह अतीत सवाया। गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊंचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया। मारू मेला पहला, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज हो निचिंदा, क्रम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। नित दामन जो चमक चंदायन देखे, एनस ज्योत निरंतर देखे,

देख अदित रहो लिव लागी, सब त्रिभुवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए, ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दीजे, हर जप ये अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त हीरा, हर जप से मन मन से तीरा, दुकट कट पौ पंजन पाये, बाहुर जन्म न जाया, भगत हेत गुर सब तरंगा, हर जप नाम पदार्थ मंगा, हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सवाया, जिन जप जपियो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक पगता के, उत्तम संगत गत मित उत्तम, जग पौजल पार कराया, ए पौजल जगत शब्द गुर तरिये, अंतर की दुबदा अंतर जरिये, पंच बाण ले जम को मारे, गगनंतर तनख चढ़ाया, साकत नर शब्द सुरत क्यों पाये, शब्द सुरत बिन आये जाये, नानक गुरमुख मुक्त परायण, हर पूरे पाग मिलाया, निरपौ सतगुर है रखवाला, भगत परापत गुरु गोपाला, तुन आनंद अनाहद वाजे, गुरु शब्द निरंजन पाया, निरपौ को सिर नाही लेखा, आप अलेख कुदरत है देखा, आप अतीत अजोनी संभो, नानक गुरमत सो पाया, अंतर की जब सतगुरु जाने, सो निरपौ गुरु शब्द पछाने, अंतर देख निरंतर बूझे, अंत न मन डोलाया, निरपौ सो अब अंतर वस्या, एनस नाम निरंजन रसिया, नानक हर जब संगत पाये, हर सहजे सहज मिलाया, अंतर बाहर सो प्रभु जाने, रह अलिप्त चलते कर आने, ऊपर आद सर्ब तिहु लोई, सच नानक अमृत रस पाया, मारू मैला पहला, कुदरत करने हार अपारा, कीते का नाही क्यों चारा, जी उपाय रिजक दे आपे, सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहा पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुप्त प्रगट हर कट कट देखो, वर्ते काक सबाया, जिसको मेले सुर समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, अनद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले परम जाया, मन तन तंते नाम प्यारा, संत सखाई चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मिलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेवो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर के, हर दर गए जस गाया, सत गुर

सत पत पाए साकत छोर नाई हर मंदर जन्म मरे दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाहा पावो नाम रतन तन लाहा विख्या मल जाए अमृत सरनावो गुर सर संतोख पाया सतगुर से वो संत न की जय आशा माए निराश रही जय संसार दुख बिना सन से वो फिर बहुर रोग न लाया साचे पावे तिस वधियाए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूरत एका वर्त है नानक हर गुर पाया वाचे है पुस्तक वेद पुराना इक बह सुने सुनावे काना अजदर कपट कहो क्यों खुले बिन सतगुर तत न पाया करे विपूत लगावे पस में अंतर क्रोध चंडाल सोहो में पखंड की ने जोग न पाये बिन सतगुर अलख न पाया तीरथ वर्त नेम करे उद्याना जत सत संजम कथे ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाये बिन सतगुर परम न जाया न्योली करम प्रियंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड तरम प्रीत नहीं।

संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुख ठौर न पाए कबहू, सतगुरु बूझ बुझाई है, सतगुरु सेवन सेवड पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछानी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुरु अपना सभी सेवे, हो मैं विच्चों जाई है, गुर ते बूझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुरु सेवे की वड्याई, कृष्णा फूख गवाई है, आपे आप मिले ता बूझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द वजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख गिरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, तिस दिन अवर ना कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर ना होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अन दिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत ना होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुरु प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुख दाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, आम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

पूजय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरथा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो में मल लाई।

काया संगारे, मर मर जम में शब्द ना विचारे, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलियावट पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रस चाखे सच सोई है। हम मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हों होर ना जाना, सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हों मैं सब देखोई है। आपे गुण दा

साथ से ते पत होई हे। मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग चिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावे। दर्शा से पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मनमुख निंदक पत

तय पाए सुवाए है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाए, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक ग्रे कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तय पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोग पहुंचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सों लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिर जे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभ क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव ना जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे

फीका मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है। अवगणियारी कंस न पावे मन की जूठी जूठ कमावे। फिर कासाओ न जाने मूरख बिन गुरबूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे। गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब लेखे इकना बख्श ले तुर लेखे। हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है। हूँ मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे। आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे। सतगुरु सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी। बहुते पेक करे नहीं पाए बिन सतगुरु सुख न पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तितरा चराए। आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है। आपे करता आपे पुगता आपे संजम आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता। एक है गुप्त प्रकट है आपे गुरमुख परम पहु जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता अंतर नाम शब्द पछाता। जित तू दे सोई जन पाए नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा सत साला ही गहर गंभीर है। सब जग है तिस ही कहती रह सब कट भोग वै सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है। किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही। सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है। देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है। हर नाम चेता अवरना पूजा एको सेवी अवरना दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है। प्रम प्रम जोनी फिर आया आप पूला जा खसम पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अवनासी है। काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी। डुबदे पात्र मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अवनासी है। ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा। आपे बख्श लें सुख पाए सभी नाम निवासी है। तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वन जब अपारा। सच तन जमया कोट न आवे अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगणियारे नो गुण की जय आपे बख्श लें नाम दी जय। गुरमुख हो वे सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख हो वे सो तन पाए सभी नाम निवासी है। अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई। मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न संभाले अंत बिगूते। पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते।

आपे लाए ले जग जीवन दाता, आपे बख्शे दे वडियाई, गुरमत एवं मन पी जय है, माया लहर शब्द निवारी।

मन मुख ना बूझे फिर ए आनी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदिन आरजा छीजे अंतर लोभ करे नहीं बूझे सिर ऊपर जम काल

दुआ श्रिया का खत्म है आपे आपे गुण में पी जय है। गुर के शब्द सदा जन सो है नाम रसायन एव मन मोह है। माया मोह मैल पतंग ना लागे गुरमति हर नाम पी जय है। सब नाम विच वरते एक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई। हूँ मैं मार सदा सुख पाया नाई पाके अमृत पी जय है। किलविक दुख निवारण हारा गुरमुख सेविया शब्द विचारा। सब किस आपे आप वरते गुरमुख तन मन पी जय है। माया अगन जले संसारे गुरमुख निवारे शब्द विचारे। अंतर सांप सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जय है। इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे जमना छोड़े बहु कर्म कमावे। सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये हर हर रसना पी जय है। मनमुख अंतर पगत न होई गुरमुख पगत शांत सुख होई। पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पी जय है। ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी।

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पी जय हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक नाम रते मन साचा, सच्चो सच रवि जय हे, मारू मैला तीजा, सच्चे सच्चा सच रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है, सच्चा सौदा सचवा पारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोट ना आवे, बूझे कोई चारी है, सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक वड़ता।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आते कीना।

गुरुमुख हो वै सो सच कमावे, साची करनी सारी है। कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई। गुरुमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है। सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे। ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है। बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया। बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है। साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया। सच्चो सेवे सच से आवे, सच रते विचारी है। गुर की सेवा मीठी लागी, अंदिन सुख सहज समाधि। हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है। से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए। सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है। गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता। एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है। हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले तुर खत्म लिख पाया। गुर साचे ते साच कमावे, साचे दुख निवारी है। जा तू देह सदा सुख पाए, साचे सब दे साच कमाए। अंदर साचा मन तन साचा।

जा आते आप उपाय उपन्ना सब में वर्त है एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुचित है विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है हम गुण ना ही क्या बोले बोले तू सब ना देखे तो

गुण में एको निर्मल साचा, गुर कह सबद पछाता है, जह देखा तह एको सोई, दूजी दुर्मत सब देखोई, एक स्ने प्रभ एक समाना, अपने रंग सदराता है, काया

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एको जाता है, मनमुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द नाही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम से आये सदा सद, ए मन ना मेरा ता है, ना मेरा ता पवित्र शरीरा, बिन नामे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, इतना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर

माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष शोक सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है, हर कै पाने हर गुण गाए, सब किलबिख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख विरली जाता है, मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मेले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है, मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरुमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है, गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है, रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है, सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पथरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द न बूझे, गुरमुख विरले जाता है, आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता है, मारू महला तीजा, को सच सेव्यो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है, आपे सच्चा सत वरताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवै साच कमावे, नामे सच समाहा है, तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है, गुरमुख वणज करें पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है, आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है, पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है, आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है, आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाई, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है, पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है, सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है, गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे इक

सबत सला है से जन निर्मल निज करवा सा ताहा है। सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे।

सच देवो सच समाहा है मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन साच नाम लिव लागी सदा सुख दाता रव्या कत अंतर शब्द सच्चा ओ माहा है। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहा है। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुरु सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया गुरमुख होवे सो अलिप्तो वरते मन मुख का क्या बेसाहा है। से मन मुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने तय बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफरियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

गुरुमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत काहा है। गुरुमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे। गुरुमुख सदा रहे रंग राते अंदिन लें दे लाहा है। गुरुमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे। अंदिन गुण गावे दिन राती सहसेती कर जाहा है। सतगुरु

नानक जन नाम सलाहे, बिगसै सो नाम बेपरवाह है। मारू महला तीजा, हर जियो सेवियो अगम अपारा, किसदा अंत न पाये पारा वारा। गुर प्रसाद रविया कट अंतर, तित कट मत अगाह है। सब मैं वरतै एको सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सबना प्रतपाल करे जग जीवन, दींदा रिजक संभाहा है। पूरे सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगत उपाया। हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर साहा पात साहा है। सच्चा सतगुर शब्द अपारा, तिस दे शब्द निस्तर है संसारा। आपे करता कर कर वेखे, दींदा सास गिराहा है। कोट मदे किसे बुझाए, गुर कै शब्द रते रंग लाए। हर साला है सदा सुखदाता।

सतगुर पूरा साथ दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरुमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रापे, अंदिन सेवे सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लभ लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन कीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरतन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन पा

तो वर्ते अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल विकसे बुद्ध ताहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिफत सलाहा है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुलावने।

गुर कै शब्द अमृति आया, अमृति अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुकाहा है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौं मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मल ताहा है, सेवक सेवे शब्द सलाहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बक्से शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकथ कथे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्द का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नान

पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा त्यायन, गुरमत शील सनाहा है, अंदर रंग सदा प्यारा, गुर कै सबद हर नाम प्यारा, नौ निद नाम वस्या सठ अंतर, छोड़िया माया काला है, रैयत राजे दुर्मत दोई, बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक त्यायन सदा सुख पायन, नेचल राज तिनाहा है, आमन जाना रखे न कोई, जम्मन मरण तिसहते होई, गुरमुख साचा सदा त्यावो, गत मुक्त तिसहते पाहा है, सच संजम सतगुरु द्वारे, होमे क्रोध सबद निवारे, सतगुरु सेव सदा सुख पाये, शील संतोख सब ताहा है, होमे मोह उपजय संसारा, सब जग बिन से नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच सबद मिलवा जावाया।

सच्चो सच वखाणे, गुरमुख सत सेवै सच्चो सच्चा, गुरमुख सबद सुनाएदा, गुरमुख होवै सो जी पाए, हों मैं माया परम गवाए, गुर की पौड़ी उत्तम ऊची, दर सच्चे हर गुण गाएदा, गुरमुख सच संजम करनी सार, गुरमुख पाए मोख द्वार, पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएदा, गुरमुख होवै मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए, जो तिस पावै सोई करसी, जो सच्चे मन पाएदा, जा तिस पावै सतगुरु मिलाए, जा तिस पावै ता मन वसाए, अपने पाणे सदा

गुरुमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन जो समकर जाने सो मेरे प्रभ पाएंदा।

समायदा मारू महला तीजा आपे श्रेष्ठ हुकुम सब साजी आपे काप उसाप निवाजी आपे न्याय करे सब साचा साचे साथ मिलाएंदा काया कोट है आकारा।

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कब होना टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तब संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाएंदा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जांच से पछाने, माया मोह चुकाएंदा, एक माया मोह गर्भ

अच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पचाता तुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर।

मत जिहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंग ना केतै मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच।

करता जो पावे तिमें चलाएंदा। सिमरत सासत अंत न जाने मूरख अंधा तप न पछाने। आपे करे कराए करता आपे परम पुलाएंदा। सब किस आपे आप कराए आपे सिर सिर संदे लाए। आपे थाप उठा पे वेख है गुरमुख आप बुझाएंदा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा सदा सलाही तामन तीरा। अदम अगोचर कीमत नहीं पाई गुरमुख मन वसाएंदा। आप निरालम होर संदे लोई गुर प्रसादी बूझे कोई। नानक नाम वसे कट अंतर गुरमती मेल मिलाएंदा। मारू महला तीजा जुग छत्ती कियो गुबारा तू आपे जाने।

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वैसो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूर बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वैसो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई।

आपे करता सबना का सोई, जिसनो आग बुझाए बुझे कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मिलाएंदा, हों मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह न चूके माया, अगे जम काल लेखा ले रहे, जो तिल कानी पीड़ाएंदा, पूरे पाग गुर सेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल किस नेड़ ना आवे, महल सच्चे सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाए, पूरे पाग गुर सेवा लाए, तेरे हाथ है सब वड्याई, जिस देवे सो पाएंदा, अंदर परदास गुरु ते पाए, नाम पदार्थ मन वसाए।

पाए, गुर कै शब्द सच चित लाए, जिसनो सच देव सोई सच पाए, सच्चे सच मिलाएंदा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नाम है मन तन है कुश्ती, नरके वासा पाएंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाए सदा सुख

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवड पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके थान सुहाया, गुरमुख विरले किने थान पाया, इस साथ निभ है साला है सच्चे, हर सच्चा

सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएगा। एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला फिर हाथ न आवे पद किसे पछताएगा। गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएगा। हों मैं गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उधारे गुर के शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा। सोचे ते जिस आप चिताए गुर के शब्द वसै मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएगा। जिन मन विच वठ पाई सोई जाने गुर के शब्दे आ

सब मूल है माया, दूजे पाए परम फुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाए दा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाए दा, बिन पाजा गुर से

गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभु सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते, मन मेले कीमत पाएदा, काया विच वस्त कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएदा, हर जियो सब में रहा समाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मिलाए आपे, सब दे सहज समाएदा, आपे सच्चा शब्द मिलाए, शब्दे विच्चों परम चुकाए, नानक नाम मिले वड्याई, नामे ही सुख पाएंदा, मारू महला तीजा, अगम अगोचर वे परवाहे, आपे मेहरवान अगम अथाहे, अपड़ कोई न सके तिसनो, गुर शब्दी मेलाया, तुदनो सेवे जो तुद पावे, गुर कै शब्दे सच समावे, अन दिन गुण रवे दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरे से मरण सवारे, हर के गुण हृदय उतारे, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाव चुकाया, हर जियो मेले आप मिलाए।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौ मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को हुआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तो

नाए समाया अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए। इस दी बूझे जे गुर शब्द कमाए तन।

मिलाया पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चित लाया हौं मैं विच सब जले शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे गुर के शब्द मरे मन मारे हौं मैं जाए समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई अंतर जोत शब्द

पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए, गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर सब

आपे कृपा करे नाम देवै, नानक नाम समाई है। ज्ञान रतन मन प्रगट पया, नाम पदार्थ सहजे लया। ए वडियाई गुर ते पाई, सतगुर को सद बल जाई है। प्रगटिया सूर निस्मिटिया अंधियारा, अज्ञान मिटिया गुर रतन अपारा। सतगुर ज्ञान रतन अत पारी, कर्म मिले सुख पाई है। गुरुमुख नाम प्रगटी है सोए, चहु जुग निर्मल हच्छा लोए। नाम में नाम रते सुख पाया, नाम रहा लिव लाई है। गुरुमुख नाम प्राप्त होवे, सहजे जागे सहजे सोवे। गुरुमुख नाम समाय समावे, नानक नाम त्याई है। पगता मुख अमृत है बाणी, गुरुमुख हर नाम आख वखाणी। हर हर करत सदा मन बिगसे, हर चरणी मन लाई है। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा कर हर जियो, सतगुर की सेवा लाई है। जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्वे रव रहा सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जिनको आद मिली वडियाई, सतगुर मन वसिया लिव लाई। आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई हे। जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हारा, सोई तेरा सहाय है। मात गर्भ में जिन प्रतपालिया, सास गिरास होए संग समालिया, सदा सदा जपिय सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्या

थानंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग तन ताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने जीत आवो वसो कर अपने लख चौरासी नरक न देखो रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊंच अथा अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जनत सहते आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा की ने कर गोले अनहद ऋण चुनकार

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे दिन रात।

जित उतरै भूख प्यासा है सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत्संगे तो तन फिर आनंद उलासा है तन अंधी फिर चपल सियाना।

तन कछु ना समझै चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

सिद्ध साधिक बनवासी जाचे जति सती सुखवासी एक दातार सगल है जाचक दे दान सृष्टि जाहे करह भगत अर रंग अपारा खिन मैं थाप उठा पनहारा पारो तोल बेअंत स्वामी हुकुम मन भगती जाहे जिस देहे दर्श सोई।

तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपुरे ले टूटा गंडा, सुरत शब्द रिद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जाहे, मरे नाही सद सद ही जीवे, अमर पया अविनाशी थी वे, ना को आवे ना को जावे, गुरदूर की

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु शास्त सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक साथ संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुर सेवक को बिघन न पगती, हर पूर दृढ़ाया ज्ञाना है, गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहा गोसाई, ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहत्याना है, गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले ने जो है माई, सत संतोख दिया गुरु पूरे, नाम अमृत पी पाना है, गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी, जिन जिन जपी ते सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है, सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किछ करे

आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्तै आप निरारा, वरन जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा, लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आई।

हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी, अनेक रंग करें बहु पांति, जो पिता पूत लड़ाएदा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, तामिली है जान ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएदा, तू आपे करता कारण करना, श्रेष्ठ उपाय तरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारे, हर पावे ला।

श्रवण सुनिए। दूजी अवर न जापस काई सगल तुम्हारी तारणा, आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया, आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा। एक उपाय वड दरबारी, एक उदासी एक करबारी, एक पूखे एक त्रिपत अघाए, सब सह तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा, ओत पोत भगतन संगराचा, आपे गुप्त आपे है प्रगट, अपना आप पसारणा। सदा सदा सद होवन हारा, ऊंचा अगम अथा।

पासे आनंद मंगल हर चल तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चलत तुम्हारा।

गुरु उपदेश जपिए मन साचा, गुरु उपदेश राम रंग राचा, गुरु उपदेश तुटे सब बंधन, ए परम मोह पर जालना, जह राखे सोई सुख थाना।